0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਜ਼ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज UAE पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और UAE की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। UAE अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक

समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और

जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जिसके पाग मथन।
1: संगरांद दे पावन दिहाड़े ते तुसी सरवण कर रहे सी 12 मार्चों इस महीने दा पाठ। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुन सुनिए प्रोग्राम गांधी चर्चा। इस प्रोग्राम च तुसी महात्मा गांधी जी दे प्रेरक प्रसंग सुनते हो।

प्रभु की लीला और माया का अद्भुत दृश्य उपस्थित है अयोध्या में, जो सर्वत्र व्याप्त निरंजन अर्थात माया रहित निर्गुण और अजन्मा ब्रह्म है। वह भक्ति और प्रेम के वश होकर माता कौशल्या की गोद में नन्हा शिशु बनकर खेल रहा है। नील कमल और जल से भरे मेघ के समान इस बालक के शरीर में करोड़ों कामदेवों का अनुपम मनोहारी रूप है। चरण के तलवों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह अंकित हैं। नन्हे नन्हे पांव से पैंजनी की ध्वनि मुखरित होती है तो मुनियों का मन विमोहित हो जाता है। लाल कोमल होठों से उच्चरित मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। चिकने घुंघराले बालों को माता ने कई प्रकार से बनाया संवारा है। ऐसी ही मनोहारी छवि है पीली झंगली में लिपटे शरीर के हाथों और घुटनों के बल चलने की। बाल लीला देखने और उसके सुख का भागी होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति जोड़ी है। भगवान शंकर पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, इस प्रकार जगत के माता पिता अवधपुर के निवासियों को सुख दे रहे हैं।

0: रुक जे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में तस्वीर तेरी दिल में।
1: मोहम्मद रफी ते लता मंगेशकर की आवाज़ जे माया फिल्म का गीत सी। इदां दे गीत सुन के मूड की तस्वीर बहुत सोहनी हो जाती है जी। गीतां च बड़ी ताकत हुंदी है। आ परसों 13 मई नूं जिहड़ा IPL का मुकाबला RCB ते KKR के दरम्यान होया सी ना, उस मैच में विराट कोहली ने 60 बॉल च 105 दौड़ा नॉट आउट बनाईया सी। वो प्लेयर ऑफ द मैच बने सी। प्लेयर ऑफ द मैच इनाम देण लग्या जदों उन्हां नूं पुछया गया ना कि तुसीं T20 क्रिकेट विच हुण तक 14,000 रन सब तो तेजी नाल बनाए ने, 279 IPL मैचेस खेड चुके हो, इन्ने मैचेस होर किसी क्रिकेटर ने नहीं खेडे, होर भी बहुत सारे रिकॉर्ड तुहाडे नाम ने, इन्हां सारे रिकॉर्ड्स नूं तुसीं जदों वेखदे हो ते की महसूस करदे हो? इस ते ना विराट कोहली का जवाब बड़ी प्रेरणा देण वाला सी। उन्होंने कहा कि मैनूं बल्लेबाजी करन नाल प्यार है, मैनूं क्रिकेट खेड नाल प्यार है, जद भी मैं मैदान च उतरता तो अपना शरीर, अपना मन, अपनी रूह पूरी तरह के नाल इस खेड नूं दे देना। मैनू पता है कि एक दिन इदां दा आएगा जदों मैं खेड नहीं रहा होवांगा, सो इस करके मैदान के हर दिन नूं मैं भरपूर जीउण की कोशिश करदा। मेरी नज़र रिकॉर्ड ते नहीं हुंदी, बल्लेबाजी करदे आ जदों मेरे बल्ले दे विच गेंद वजदी है ना, वह मज़ा, वह नशा मैनू इस खेड च तुरदे रहण लई प्रेरित करता रहिंदा। सो वाकई जी कोई भी अपनी जिंदगी का विराट कोहली बन सकदा, अपने काम नूं प्यार करके, अपने हुनर नूं अपनी जिंदगी का जनून बना के, अपने किते नाल गूढ़ी प्रीत पा के। सो अपने काम नूं असी विराट कोहली दे अंदाज च करन दी कोशिश करिए, असी भी जिंदगी दे चैंपियन बन जावांगे। सोनी स्वेर प्रोग्राम आकाशवाणी जलंधर तों प्रसारित किया जा रहा है।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 8 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫਰਹਤ ਨਾਜ਼। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से LNG तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
3: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है।

0: अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस

0: अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित

0: सात परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के सात मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशू खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशू को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: फरत, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ

0: हो तीसरा सदस्य, जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए, सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, NTA का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sanda World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership, underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said, energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's 4th largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. According to him, India is now the largest buyer of LNG from the UAE. The UAE also supplies nearly 40% of India's liquefied petroleum gas imports and remains a significant destination for Indian petroleum exports. Our correspondent has filed this report.
3: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supplier to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi National Oil Company for 500,000 tons of LNG annually beginning 2028, giving India greater price stability by reducing its reliance on spot markets. Renewable energy and civil nuclear cooperation are also gaining ground. UAE saw sovereign wealth funds are actively investing in India's solar infrastructure, while India's Shanti Act, which opens the nuclear sector to private players, has created fresh scope for collaboration in reactors, including small modular reactors. Both sides are pushing to settle energy transactions in rupees and dirhams, reducing dollar dependencies in bilateral trade. From oil to LNG, clean energy to nuclear, the India-UAE energy partnership is being redrawn for a decarbonizing world.

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ते इटली दे 6 दिन दौरे लई रवाना होणगे। श्री मोदी ने कहा कि इस साल भारत की प्रधानगी हेठ ब्रिक्स एक समावेशी विश्व व्यवस्था बनाने रल के काम करेगा। तेल कंपनियां ने पेट्रोल ते डीजल दीयां कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर का वाधा किया है। सरकार ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम तहत सोने की दरामद से 100 किलोग्राम की सीमा तय की है। भारत की वुशु खिडारन अपर्णा दहिया ने मकाऊ में हुए 11वें सांडा विश्व कप में सोने का तमगा जितया। IPL क्रिकेट में बीती रात मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स 6 विकटों हरा दिता है। हुण खबरां विस्थार नाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ते इटली दे 6 दिन दौरे लई रवाना होणगे। अपने 5 देशों दे दौरे दे पहले पड़ाव ते श्री मोदी अज UAE पहुंचणगे, जिथे उह राष्ट्रपति शेख मुहम्मद बिन जायद अल नहयान नाल मुलाकात करनगे। दोवें नेता दुवल्ले मुद्दों खास करके ऊर्जा सहयोग अते नाल ही आपसी हित दे खेतरी ते अंतरराष्ट्रीय मुद्दों ते भी चर्चा करनगे। दौरे तो पहला मीडिया नाल गलबात करदिआं विदेश मंत्रालय विच पछम मामलों बारे सकत्तर असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोवां देशों के संबंधों का एक मुख थम है। उन्होंने कहा कि पिछले साल UAE भारत के कच्चे तेल का 4था सब तो वड्डा स्रोत सी। भारत अपनी LPG का लगभग 40% UAE तो दरामद करता है। भारतीय कंपनियां ने UAE दीआं तेल कंपनियों में निवेश किया है। ये दोवां देशों विचकार वध रही ऊर्जा साझेदारी का संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा मौके UAE विच भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा अजे समय हो रहा जदों यह खेत्र बेमिसाल विकास और चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस साल भारत की प्रधानगी हेठ ब्रिक्स बहुपक्षीवाद को मजबूत कर, निरंतर विकास को उत्साहित कर, आर्थिक मजबूती वधाउण अते एक समावेशी विश्व व्यवस्था बनाने लई रल के काम करेगा। नवी दिल्ली विच ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों अते प्रतिनिधि मंडलों के मुखियों नाल गलबात करदिआं श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों विच सहयोग वधाउण अते आलमी दखण दीआं इच्छावां नूं पूरा करन लई इक महत्वपूर्ण मंच वजों उभरिआ है। यह मीटिंगां नवी दिल्ली विच चल रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की मीटिंग दौरान हुईआं। इस तो पहला ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की मीटिंग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि शांति ते सुरक्षा विश्व व्यवस्था के केंद्र विच ने। उन्होंने कहा कि हाल ही के टकरावों ने गलबात और कूटनीति की महत्ता को होर भी वधा दिता है। तेल कंपनियां ने पेट्रोल ते डीजल दीयां कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर का वाधा कर दिता है। दिल्ली में हुण पेट्रोल की कीमत 94.70 रुपए प्रति लीटर तो वध के 97.70 रुपए प्रति लीटर, तो डीजल की कीमत 87.67 रुपए तो वध के 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इस तरह मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106 रुपए

एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। पंजाबी फिल्मी गीत तुसी आकाशवाणी जलंधर तो सुन रहे हो, ते हुण भंगड़ा फिल्म चो गीत सुनो, शमशाद बेगम दी आवाज़, बोल वर्मा मलिक दे, तर्ज हंसराज बहल दी।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
1: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
1: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
1: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
1: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी। जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
1: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी,
1: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
1: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
1: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
1: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे एक कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
1: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार

0: में सहूलियत होगी और वो सांस भी ठीक से ले पाएगा।
1: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
0: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें, उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या न करें,
1: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं
1: जी।
0: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी
1: जी।
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
1: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।
1: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
3: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
1: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
3: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो, थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
4: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
5: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।

0: हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
2: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
3: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
4: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों

0: के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंगभूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
1: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
2: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
3: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। पर ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
2: आजा खेलते हैं।
3: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
4: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
3: अच्छा वो क्या?
4: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
5: हाँ दूसरा क्या?
4: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
2: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

0: इस वर्दी को पहनकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और यही मुझे सैनिक के कर्तव्यों का एहसास कराती है।
1: मेरे को भी यह वर्दी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन मैं भी इसे पहनूंगा और देश की रक्षा करूंगा।
0: शाबाश पुत्र, शाबाश। देश को तुम्हारे जैसे निडर और साहसी बच्चों की ही तो जरूरत है।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बहुत मुश्किल। बिल्कुल, बिल्कुल।
3: देखो चुन्नी लाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ, आ गया हो, आ गया। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते से।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा था।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी, और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे।

0: सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था, तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
1: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
2: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
1: जी
0: अच्छा, बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
3: उधर से दुश्मन आ रहे हैं।

0: मैंने यही रोक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूँ।
1: ठीक है साहब, ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैनगन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार।

0: सरदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहुजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहुजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: तुसी NCERT वालों स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग सुन रहे सी। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। 10 बज चुके ने, हुण तक दीआं मुख खबरां सुणो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ते इटली दे 6 दिनां दौरे लई रवाना होणगे। तेल कंपनियां ने पेट्रोल ते डीजल दीआं कीमतां विच 3-3 रुपए प्रति लीटर दा वाधा कीता है। सरकार ने एडवांस अथोराइजेशन स्कीम तहत सोने की दरामद ते 100 किलोग्राम की सीमा तय की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने कथित नीट UG 2026 प्रीख्या पेपर लीक मामले विच 2 होर मुलजमान नूं गिरफ्तार किया। कांग्रेस ने VD सतीसन सोमवार नूं केरलम दे नवें मुख्यमंत्री वजों सहु चुकणगे। उत्तर प्रदेश विच पिछले 36 घंटियां विच मीह तूफान ते आसमानी बिजली डिगण कारण 111 लोगों की मौत ते 200 दे जख्मी होने की खबर है। खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि खेतीबाड़ी मंत्रालय ने देश भर के पिंडां विच किसानां नूं खादां दी संतुलित वरतों बारे जागरूक करन लई एक मुहिम शुरू की है। मौसम विभाग वल्लों पंजाब ते हरियाणा विच 16 तों 19 मई तक जबरदस्त गर्मी पैण दा येलो अलर्ट जारी। भारत की वुशु खिडारन अपर्णा दहिया ने मकाऊ विच होए 11वें सांडा विश्व कप विच सोने का तमगा जितया। तो IPL क्रिकेट विच बीती रात धर्मशाला विखे खेडे गए मैच विच मुंबई इंडियनज ने पंजाब किंग्स नूं 6 विकटां नाल हराया। ये सन हुण तक दीआं मुख खबरां। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं जी। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते। हुण पेश है जी लाइव फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतां दा प्रोग्राम हैलो फरमाइश। इस प्रोग्राम च तुसी फोन करके अपनी पसंद दे फिल्मी गीत सुनदे हो। साडा फोन नंबर नोट कर लो, 0181-23-42-173। 01-81-23-42-173। तुहाडा दोस्त वीरेंद्र हाजिर है अज्ज दा हैलो फरमाइश प्रोग्राम तुहाडी सेवा च लैके।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: ब्रेक तो बाद हैलो फरमाइश प्रोग्राम फिर तो हाजिर है जी। तो फिर तो तुहानू चेता करा दईए कि 11 बजे तक साडा ये प्रोग्राम चलना है। तुसी फोन करके सानू अपनी फरमाइश ते गीत सुन सकते हो। साडा नंबर है 0181-23-42-173। हाँ जी स्वागत है जी।
2: सत श्री अकाल जी।
1: कौन बोल रहे हो?
2: मैं जय सिंह खैरा पिंड कलारा जी नाभा जिला पंचायत तो बोल रहा जी।
1: जी बाहर किसी समागम च लगते हो अजैब जी?
2: हाँ जी हाँ। नहीं जी मैं घर ही हां दबी है समागम।
1: अच्छा अच्छा दसो गीत केड़ा सुनना?
2: फिर मैं जी माया गीतकार मजरू सुल्तानपुरी संगीतकार सुनील चौधरी आवाज है लता मंगेशकर जी गाने में बोल रहे जा रे यारे उड़ जावे पंखी बहारों के देश जा रहे यहाँ क्या है मेरे प्यारे।

0: आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: हुण तक 8,85,00,000 तो वध लाभपात्री इस योजना नाल जुड़ चुके हैं। जेकर तुहाडी उम्र भी 18 to 40 साल दे विचकार है तां महीनावार अटल पेंशन समेत योजना दे 3 गारंटी शुदा लाभां बारे जानकारी लई अपनी बैंक शाखा नाल संपर्क करो।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: हेलो,
5: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
6: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
7: 10:56 हो गए ने जी। आकाशवाणी जलंधर दे हैलो फरमाइश प्रोग्राम च हुण आखिरी फोन कॉल ते अज दे प्रोग्राम दा आखिरी गीत। हाँ जी, स्वागत है जी।
8: हाँ जी, सत श्रीकाल जी।
7: सत श्रीकाल जी, कौन बोल रहे हो?
8: हाँ जी, तहसील अबोर टाणी कड़ाका सिंह तो बोल रहे जी।
7: कौन? मंगत सिंह जी।
8: हाँ जी, मंगत सिंह।
7: हाँ जी मंगत सिंह जी, की हाल है? ठीक ठाक हो?
8: हाँ जी, बहुत वधिया सर जी, आपने सुनाओ जी।
7: बहुत वधिया। फोन अगे भी करते रहते होंगे हो कि पहली बार आए हो अज?
8: सर 2 साल बाद फोन लगे जी।
7: अच्छा, 2 साल बाद लगा? ओहो।
8: हाँ जी, पहले भैन सुखजीत जी ने चुके सीगा।
7: अच्छा, ये भी चेता है 2 साल पहला किने चुकिया सी फोन?
8: हाँ जी सर, अज तो तुम बैठे हो तुहाडे कोल फोन लगे जी।
7: चलो मंगत जी नु केड़ा गीत सुनाइए?
8: हम आपके हैं कौन दा कोई गीत हो जी।
7: ठीक है जी, मंगत जी बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए।
8: धन्यवाद जी।
7: लो जी, फिर मंगत सिंह और आंधी फरमाइश ते प्रोग्राम दे आखिर च हम आपके हैं कौन फिल्म दा गीत SP बाला सुब्रमण्यम दी आवाज च। तुसी सारे लो इस गीत दा मजा ते अपने दोस्त वीरेंद्र नु दे दियो इजाजत। अज दा हैलो फरमाइश प्रोग्राम खत्म करन दी। नमस्कार।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को हुई परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस समय नीट परीक्षा के संबंध में बयान दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: जो एग्जामिनेशन हो गई, उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए विस्तार से एनटीए एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल, शाम तक आपको फिर एनटीए के पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों, कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर से छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं।
1: इससे पहले आगामी नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल रात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से आयोजित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा मध्य विस्तार क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण के अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कल पेइचिंग में वार्ता की। दोनों ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद साझा सहयोग पर बल दिया। श्री ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह उनकी पहली चीन यात्रा थी। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में 3 बच्चों सहित 21 लोग मारे गए हैं और 45 घायल हुए हैं। यूक्रेन की आपात सेवाओं के अनुसार कल हुए इस हमले में मकानों, एक स्कूल, एक पशु चिकित्सा केंद्र और अन्य नागरिक भवनों को

0: नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनते हाँ प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी। इस प्रोग्राम च तुसी सुनते हो अपने मनपसंद पंजाबी गीत। इस प्रोग्राम च अपनियां फरमाइशां भेजण लई वट्सएप नंबर नोट करो जी 94 65 53 60 77। रिपीट कर दें 94 65 53 60 77।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक बार फिर स्वागत है जी तुहाडा प्रोग्राम धमक जलंधर पेंदी विच। अगली फरमाइश सानू भेज रहे ने जी पिंड बसौली लाल लड़ू मंडी तो टीनू पट्टी साधु सिंह पट्टी सकीला पट्टी कुलवंत काला ते इन्हां दा सारा परिवार। फरमाइश कर रहे ने जी हरभजन मान दी आवाज़ विच कोई भी गीत सुना दिता जावे। इन्हां दी फरमाइश पूरी करदे हाँ। अगली फरमाइश सानू भेज रहे ने जी मलियान सरदना मेरठ तो अनिल जैन जैन साहब संयम जैन मुस्कान जैन मास्टर जीवनमय जैन। अगली फरमाइश सानू भेज रहे ने मुकेश राधेश्याम शर्मा इंदिरा शर्मा सार्थक शर्मा ते इन्हां दा सारा शर्मा परिवार। अगली फरमाइश सानू भेज रहे ने छत्तीसगढ़ तो हीरा मणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा ते इन्हां दा सारा वर्मा परिवार। ये भी फरमाइश कर रहे ने जी कि हरभजन मान ते जसपिंदर नरूला दी आवाज़ विच एक गीत सुना दिता जावे। इन्हां सारे दी रली मिली फरमाइश ते सुनदे हाँ जी ये गीत।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया लड़ीवार नाटक होया।

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्चे से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्चे की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12:05 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ।

0: नमस्कार। प्रोग्राम वसदी विड़े लेके कोमल हाजिर।
1: बिल्कुल जी, और ज्योति भी हाजिर है बिल्कुल नाल नाल। और कोमल जी, जदों असीं इस विड़े च आउंदे आ ना, मतलब अपने वसदे विड़े परिवार दे विच आ जाने आ ना, मन साडा बड़ा ही खुश हो जाता है। एक ताजगी, एक एनर्जी साडे च आ जाती है,
0: क्योंकि एवें फील होंदा है कि असीं अपने परिवार च आ गए। ते परिवार वो होंदा है जिथे असीं अपना सुख दुख, अपनी जानकारी और कई तरह का एंटरटेनमेंट कट्ठे बैठ के करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: ते वो जड़ा वेड़ा है ना, जदों वसदा वेड़ा आपस विच रल के बैठता है ते वो अलग ही एक रिश्ता होंदा है।
1: बिल्कुल, देखो परिवार तां जी जीआं दे नाल ही हुंदा है, और
0: बिल्कुल जी।
1: जदों सारे जी इकट्ठे होके बैठ जांदे ने ते उन्नू ही

0: जी किन्ना खूबसूरत गीत है। सच्ची गल है कि जिंदगी च तीन रंग दोबारा नहीं लभदे, जद तक हैगे ने इन्हां दा सुख इन्हां नाल प्यार माण लो जिन्ना
1: और
0: हो सके।
1: जिन्ना हो सके, और माँ बाप दी थां ना कोई नहीं
0: कोई
1: रह
0: नहीं रह
1: सकदा,
0: सकता,
1: और हर उम्र दे विच माँ बाप दी लोड़ जिहड़ी हुंदी है।
0: बिल्कुल
1: और कोमल जी, अज असीं जिस तरह परिवारां दी गल कीती, साडे परिवारां दी जिहड़ी पछाण हुंदी है साडे माँ बाप तों हुंदी है, साडे वड्डे बजुर्गां तों हुंदी है, और साडा घर उहनां दे नाम तों जाणिया जांदा है, और उहनां दे दित्ते संस्कार ही जिहड़े हुंदे साडे अंदर हुंदे ने।
0: बिल्कुल तुहाडी गल सही है। ते जिहड़े उहनां दे तजुर्बे हुंदे ने ना, ओह वी सानूं बहुत सही रस्ता दिखाउंदे ने। जिहड़ा रस्ता सानूं आपां गूगल तों लभदे आ ना, ओह रस्ते ओह नहीं दस सकदा जो साडे माँ बाप सानूं सिखा सकदे ने, साडे बजुर्ग सिखा
1: जी,
0: सकदे ने।
1: और बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि असीं उन्हां दे पाए पूरनिया ते चलिए, और वड्डे बजुर्गां दी संगत जिहड़ी है ओह ज़रूर करिया करिए।
0: बिल्कुल, ते एवें दा एक सिलसिला हुंदा है उमरां दे पेंडे, ते जिहदे विच किसी ना किसी शख्सियत नूं बुलांदे हाँ, उहनां दी जिंदगी दे तजुर्बे उहनां तों सांझे करदे हाँ, ते अपने श्रोतियां तक पहुँचाउंदे हाँ।
1: जी
0: इह इक तरीका है कि किस तरह असीं वड्डियां नाल जुड़ीए, ते किस तरह उहनां दीआं गल्लां सुणीए, उहनां ने किवें अपनियां समस्यावां नाल लड़ाई कीती, किस तरह अपने संघर्ष नूं अगे वध के कढ़िया, ते अपनी जिंदगी नूं किवें जिया, ते
1: जी
0: इह जिहड़ी सीख है ना उह साडे श्रोतियां तक सिद्धी पहुँचदी है।
1: जी ते अज उमरा दे पेंडे सिलसिले दे विच बिमला देवी जी अपने जिंदगी दे तजुर्बे जड़े है साडे नाल सांझे करनगे, और उन्हां नाल गलबात कीती है सुखजीत कौर जी ने।
0: ते सुनते हैं फिर।
2: उमरां दे पेंडे प्रोग्राम च तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत। अज दे इस प्रोग्राम च साडे नाल स्टूडियो च मौजूद ने बिमला देवी, जिन्हां नूं असीं गोगां वी कहने आ। अज मारांगे इन्हां दी जिंदगी ते इक हल्की जी झात। इन्हां ने इक लंबा संघर्ष कीता अपने जीवन दे विच, बच्चियां नूं पढ़ाया लिखाया ते उन्हां दे पैरां ते खड़ा कीता। बिमला देवी यानी कि गोगां जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आया नूं स्टूडियोज़ च।
3: थैंक यू जी।
2: जी किहो जिहा लग रिहा? सब तो पहलां तां इही जानना चाहांगे आकाशवाणी दे विहड़े आके।
3: हाँ जी जी, बहुत वधिया।
2: बहुत वधिया लग
3: हाँ जी,
2: रिहा है
3: बहुत वधिया।
2: जी।
3: हाँ जी
2: जानना चाहांगे बिमला देवी उर्फ गोगा
3: हाँ जी
2: किथे पढ़ी, किथे बचपन बीतिया,
3: हाँ
2: किथे
3: जी
2: जन्म होया?
3: जी, मेरा जन्म जगपालपुर पिंड विच फगवाड़ा नेड़े, पिंड ही स्कूल सी जगपालपुर विच। हाँ
2: अच्छा।
3: जी, उत्थे पढ़े सीगे,
2: हाँ,
3: 5 क्लास मैं उत्थे कीती, 6 फिर रानीपुर
2: रानीपुर नाल ही आ
3: नाले।
2: जी।
3: हाँ जी नाले।
2: वाह
3: हाँ
2: जी
3: जी हाँ
2: वाह,
3: जी
2: यानी
3: नाले।
2: कि 6वीं तुसी रानीपुर कीती ते
3: हाँ
2: 5वीं
3: जी
2: तक
3: हाँ जी हाँ
2: जगपालपुरी
3: जी
2: पढ़े।
3: हाँ
2: अच्छा,
3: जी
2: उस वेले माहौल किहो जिहा सी?
3: जी
2: बच्चिया नूं, कुड़ियां नूं खास तौर ते दूजे पिंड पढ़न वास्ते भेज दिता जांदा सी आसानी नाल?
3: हाँ जी सन मैनू तो भेजते सी, मैं जिदा भी पढ़ाई च बहुत ठीक सी, वधिया सी, टीचर भी बहुत मेरा करते सी, ते कुछ घर दियां जिदा मजबूरी, मैं परिवार सेगा 3 भैन
2: जी
3: 3 भरा।
2: अच्छा।
3: हाँ जी, ते जिदा सारा परिवार पढ़ते सी, सारे परिवार पेके पढ़ाते सी, ते मैं ही थोड़ा कह बैठी, मैं चलो कोई गल नहीं, बाकी सारा परिवार पढ़दा, चलो कोई गल नहीं, जे मैं हट भी जाऊँ,
2: ओले।
3: पढ़ाई च ज़्यादा तेज सी पर वो रह गए।
2: अच्छा,
3: हाँ जी
2: अपनी एक निक्की जी गल करके तुसी स्कूलों हट गए।
3: हाँ जी हाँ जी, बस इदा ही भी चल साहब, बाकी सारा परिवार पढ़ता, मैं अपने पेके माँ पे इन्हें नाल कुछ ना कुछ
2: हाँ
3: वधिया नाल इन्हां दे काम कार करावा,
2: जी
3: इस गल ती बस।
2: जी, चलो तुसी
3: हाँ
2: माँ
3: जी
2: बाप दे नाल मिल के
3: हाँ जी
2: काम कार कराते रहे,
3: हाँ
2: बाकी 5 भैणां भरावां नूं तुसी पढ़ाया,
3: हाँ जी
2: और मन दे विच इक टीस जे कदे कदे तां उठदी होणी है कि मैं वी जांदी हुंदी तां चंगा सी।
3: बस जी हाँ जी, जाते ये उदों ही फिर आई जदों फिर बहुत ज़्यादा आप ते फिर पीड़ पैंदी रही,
2: हाँ, उदों पता लगदा
3: उदों फिर याद आई
2: जी।
3: बे जे मैं पढ़ी,
2: हाँ, तां फिर मैं अज
3: हाँ
2: ये
3: मैं भी
2: औखा
3: अज कुछ
2: समाना
3: बनी
2: देखा
3: हुंदी जिदा बाकी परिवार बनया सेगा।
2: जी। अच्छा,
3: हाँ जी
2: जिहड़ा बच्चा स्कूल नहीं जांदा ना,
3: हाँ जी
2: माँ बाप उहनां नूं घर दे निक्के निक्के काम भी सिखा दिंदे ने, ते नाल उस

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: जी ज्योति, जिवें असीं गल कर रहे सी ते एक मेरे ध्यान च ना उदों दी गल चल रही है कि असीं ना आले दुआले दा अपना ध्यान नहीं रखते, अणगहली छड्ड दिंदे आ। जिवें घरां दे विच किधरे कमरियां च AC चल रहे ने ते चलदे ही जा रहे ने, पखे चल रहे ने ते चले ही जा रहे, TV चलदा चलिया जा रहा, चाहे वह कमरे च कोई है या नहीं है। तो ये साडी आदत च शुमार ही नहीं हैगा कि असी कमरे चो बाहर निकल रहे हैं तो स्विच ऑफ करते हुए बाहर निकली।
2: बिल्कुल जी, समय की लोड़ यह है कि इस खास गल की सांझ जड़ी है असी सारे एक दूसरे के नाल पाइए, एक दूजे नू प्रेरित करिए कि ऊर्जा की संभाल करनी कितनी जरूरी है, ऊर्जा की बर्बादी नू रोकना और ऊर्जा की बचत करना, ये क्योंकि अज के समय से साढ़े सब दे अगे एक बहुत वड्डी चुनौती है। और जिस तरह तुसी कहा कि असी बहुत ज़्यादा खपत करते हैं या असी वेस्ट भी कर दें, इस तों इलावा खेतीबाड़ी दा खेतर है चाहे कारखानियां दे विच बहुत वड्डे पद्धर दे विच जिथे बिजली की खपत हुंदी है, उत्थे भी एनर्जी नू सेव करना, उहदी सेविंग करना बेहद लाजमी है।
1: बिल्कुल, ते जदों असीं एनर्जी की गल करदे आ ना ते ध्यान ही चांदा है बिजली, ते कल्ली बिजली नहीं है, बिजली दे नाल नाल पेट्रोल, डीजल, कोला, गैस ते उहदे नाल पानी भी है।
2: बिल्कुल,
1: ये सारे एनर्जी दे स्रोत ने। ते जदों असी इन्हां दी वरतों करन दी जगह दुरवरतों करन लग जांदे आ ना, ते ये जिहड़े ने ओह इस पोजिशन तक पहुँच जांदे ने।

0: कि सानू दिक्कत आन लग जाती। जो असी देखते हैं ना, चौथे दिन परेशान हो जाने, लाइट चली गई, इन्नी देर हो गई लाइट गई नहीं आई, तो जो होंगी है तो क्या असी वो सही वरतों करते हैं,
1: जी
0: तो जो नहीं होंगी तो किन्ने परेशान होंगे। पानी का ही देख लो, पानी का लैवल किन्ना डाउन चला गया, तो पानी की दुरवरतों कभी किधरे घटी नहीं।
1: जी
0: अज भी गड्डियां जड़ियां ने वो पानी नाल साफ कितिया जांदियां ने, जिथे पानी बह रहा है परवाही नहीं करता कोई कि उन्होंने बंद कर दईए।
1: बिल्कुल
0: ये चीज़ां जड़ियां ने वो ध्यान च रख के चलनिया चाहिए ने, ताकि असी अगली जनरेशन तक ये सारे स्रोत उसे तरह पहुँचा भी सकीए।
1: बिल्कुल जी। देखो कुदरत ने सानू किन्ना कुछ दिता है, कुदरती सोमे है, पानी है चाहे बिजली है, और असी सोलर एनर्जी की वरतों भी जरूर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कोमल जी सोलर एनर्जी यानी सूरजी ऊर्जा की वरतों की भी जा रही है। सो एनर्जी नू बचाना बेहद लाजमी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हां सोमे जिहड़े कुदरती सोमे है उन्हां दी वरतों कर सकन।
0: बिल्कुल। ते ज्योति हुण पेट्रोल ते डीजल हुंदे सी ना, जिवें आपां गड्डियां चलांदे सी, इस तों इलावा तीजा कोई सोर्स नहीं सी। अज कल जिहड़ियां ने ई वालियां आ गईयां ने, जिस तरह असीं करदे आ कि एनर्जी जिहड़ी है चेंज हो रही है, ते गड्डियां भी सानूं दूसरियां मिलनियां शुरू हो गईयां, ते हुण हौली हौली उधर झुकाव वधदा चला जा रहा
1: जी
0: है, ते ये बहुत अच्छी गल है। ते दूजी गल मैं एक होर कहांगी कि जदों आपां ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करते हैं ना किसी भी तरह की, उस तरह पोल्यूशन ज़्यादा फैलता है, ते जदों पोल्यूशन ज़्यादा फैलता है ते ग्लोबल वार्मिंग होंदी है,
1: जी
0: और कई तरह के उहदे भी प्रभाव नाल पैने शुरू हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: ते जे असीं इहदी बचत करके चलीए ते अपनी जिंदगी नूं असीं सुखावां बना सकते हैं।
1: और दूसरे नूं प्रेरित करन तो पहला बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है कि असी पहल जिहड़ी है अपने आप तो करिए, और इन्हां गल्लां बातां दा असी बहुत ध्यान रखना है जी, ताकि आने वाली पीढ़ियां जिहड़ियां है वह भी सुरक्षित रहन। और कोमल जी, हुण साडा अगला सिलसिला जिहड़ा है वह भी तैयार बर तैयार है, और शुक्रवार दे दिन साडा सिलसिला हुंदा है जी सुरखियां चौरत, ते देखदे हां औरतां दे वधदे जिहड़े कदम ने वह कित्थों तक पहुंचे ने।
0: ते देखते हैं हरप्रीत कौर केड़ी केड़ी है सुर्खियां लेके आई है।
1: जी
0: जिवें आपां सुर्खियां दी गल कीती, औरतां ते देखा जाए तो मल्लां मारदियां ही रहिंदियां ने, कई तरह दियां मिसालां कायम करदियां रहिंदियां ने। ते सुर्खियां जड़ियां ने असी जरूर सुनांगे, मगर उस तो पहले साडे कंप्यूटर जी कह रहे ने कि एक गीत सुना दिता जाए।

सुर्खियां च औरत इस सिलसिला लेके हरप्रीत हाजिर है। भारतीय पत्रकार सुपर्णा शर्मा नूं डिजिटल निगरानी ते साइबर धोखाधड़ी ते उन्हां दे काम लई वकारी पुलित्ज़र पुरस्कार नाल सन्मानित कीता गया है। सोमवार नूं ऐलाने गए पुरस्कारां दे विच सुपर्णा शर्मा नूं इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग ते टिप्पणी इस श्रेणी दे विच इह सन्मान मिलिया है। सुपर्णा शर्मा ने यह पुरस्कार उन्हां दे नाल काम कर रहे दूजे भारती पत्रकार आनंद आर के अते ब्लूमर्ग दी नेटली ओबीको पियरसन दे नाल सांझा कीता है। कैनेडा दे अल्बर्टा सूबे दे शहर ग्रैंड प्रेरी विच होए लड़कियां दे कैनेडियन रेसलिंग चैंपियनशिप दे विच पंजाबन पहलवाना ने चंगा प्रदर्शन करदे होए 13 सोने दे तगमे जीत के भाईचारे दा मान वधाया है। ग्रैंड प्रेरी दे डिजाइन वर्क सेंटर विखे होए इन्हां कौमी कुश्ती मुकाबलियां दे विच कैनेडा भर चो 700 पहलवाना ने हिस्सा लिया सी। इन्हां मुकाबलियां नूं अंडर 19, अंडर 17 ते अंडर 15 तीन श्रेणियां दे विच वंडिया गया सी। अंडर 19 लड़कियां दे विच 43 किलो वर्ग कुश्ती मुकाबले दे विच इराबी रसूच ते 69 किलो वर्ग दे मुकाबले विच खुशी चली ने सोने दे तगमे जीते, जबकि अंडर 17 श्रेणी दे विच 49 किलो वर्ग कुश्ती मुकाबले दे विच रीत तूर, 53 किलो वर्ग विच जयरीत बाही, 57 किलो वर्ग दे विच गुरलीन ढिल्लो, 65 किलो वर्ग दे विच जसमीत पन्नू ते 69 किलो वर्ग दे विच तमन्ना मुंडी ने सोने दे तगमे जीते ते गुरलीन कौर ढिल्लो नूं मोस्ट आउटस्टैंडिंग रेसलर दा खिताब भी दिता गया। अंडर 15 दे विच 39 किलो वर्ग मुकाबले दे विच ओलिविया तूर, 42 किलो वर्ग विच मेघा शर्मा, 58 किलो वर्ग दे विच जशन धामी, 62 किलो वर्ग दे विच समरीन कौर ते 70 किलो वर्ग कुश्ती मुकाबले दे विच अनरीत कौर ढिंसा ने सोने दे तगमे जीते। ब्रिटिश कोलंबिया सरकार दे अटारनी जनरल मंत्रालय ने वैंकूवर दी सीनियर पंजाबन वकील परबीन कौर मान नूं एब्सटफोर्ड दी सूबाई अदालत दा जज नियुक्त कीता है, जो पंजाबी भाईचारे लई माण वाली गल है। परबीन मान ने सन 2001 विच वकालत करनी शुरू कीती सी ते 2004 तों केंद्रीय सरकारी वकील वजो सेवावां निभा रही है। 2007 दे विच ओ पब्लिक प्रोसीक्यूशन सर्विस आफ कैनेडा नाल जुड़ी ते 2009 दे विच परबीन नूं संगठित अपराधिक केसां दी प्रोसीक्यूटर बनाया गया ते 2022 दे विच उस नूं PPSC सरी दफ्तर दी टीम दा मुखी नियुक्त कीता गया। परबीन कौर वैंकूवर दी यूनिवर्सिटी आफ ब्रिटिश कोलंबिया दे विच स्थित पीटर ए अलरड स्कूल आफ लॉ विखे सहायक प्रोफेसर भी रह चुकी है। इत्थे जिक्र योग है कि ब्रिटिश कोलंबिया कैनेडा दा इक्को इक अजिहा सूबा है जिथे 9 पंजाबणा जज वजो सेवावां निभा रहियां ने। जस्टिस पलबिंदर कौर शेरगिल, जस्टिस बलजिंदर कौर गिरन ते जस्टिस नीना शर्मा ब्रिटिश कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट दियां जज ने, जबकि हरबंस ढिल्लो, सतिंदर सिद्धू, नीना पुरेवाल, सुजन संघा, परवीन निज्जर ते परबीन मान सूबे दे वख-वख शहरां विच ब्रिटिश कोलंबियाई सूबाई अदालतां दियां जज ने। सरदूलगढ़ तों स्कूल डायरैक्टर भुपिंदर सिंह संधू दी धी डॉक्टर परनीत कौर नूं इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस विच सहायक कमांडेंट मेडिकल अफसर वजो चुनिया गया है, जो पूरे मानसा जिले अते पंजाब लई इक माण वाली गल है। मसूरी विच होई पासिंग आउट परेड विच कुल 55 सहायक कमांडेंट मेडिकल अफसर विचों देश भर तों सिर्फ 12 औरतां दी चोण कीती गई सी, जिस विच डॉक्टर परनीत कौर भी शामिल सी। डॉक्टर परनीत कौर ने राजस्थान दे अलवर अते उत्तराखंड दे मसूरी दे विच इक चुनौतीपूर्ण 7 महीनियां दा शरीरक सिखलाई प्रोग्राम भी पूरा कीता होया है। एसा ने हफ्ते दियां सुर्खियां, अगले हफ्ते फेर हाजिर होवांगे।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिन इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात

0: में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ।

रात 7:40 ते सुनोगे साडा उर्दू प्रोग्राम सबरंग। रात 8 बजे सुनोगे प्रोग्राम सलाम जिंदगी। रात 9:30 बजे प्रोग्राम सुनोगे डिस्कशन इन हिंदी सौंदर्य प्रतियोगिताएं।

0: हेलो,
1: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
2: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਏ ਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया।

एक बार फिर स्वागत है जी तुहाड़ा। प्रोग्राम चल रहा है फौजी वीरां लई। सुनते हाँ अज दे प्रोग्राम दा अगला गीत सोना महापता दी आवाज़ विच।

0: उन्होंने असेंबली इंतखाबात में अपनी पहली कामयाबी के बाद ये ओहदा पहली बार संभाला है। उनका इंतखाब प्रोटेम स्पीकर तपस राय की निगरानी में आज सुबह किया गया। वजीर आला सुवेंदु अधिकारी ने जनाब बासु का नाम बाकायदा तौर पर तजवीज़ किया था। ऐवान ने इस तकर्रुर की 100 वोट से तस्दीक कर दी। तृणमूल कांग्रेस के अरकान इंतखाबी अमल के दौरान मौजूद नहीं थे, अलबत्त उन्होंने इजलास में बाद में शिरकत की। आलमी सतह पर तवानाई की बढ़ती कीमतों के दरमियान तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपये फी लीटर का इजाफा किया है। नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 77 पैसे से बढ़कर 97 रुपये 77 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 87 रुपये 67 पैसे से बढ़कर 90 रुपये 67 पैसे फी लीटर हो गई है। इसी तरह मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 106 रुपये 68 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 93 रुपये 14 पैसे फी लीटर हो गई है। कोलकाता में फी लीटर पेट्रोल 108 रुपये 74 पैसे जबकि फी लीटर डीजल 95 रुपये 13 पैसे हो गया है। दूसरी जानिब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने भी आज सीएनजी की कीमत में 2 रुपये का इजाफा किया है। अब दिल्ली में फी किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79 रुपये 9 पैसे और गाजियाबाद और नोएडा में 87 रुपये 70 पैसे है। गुरुग्राम में सीएनजी की कीमत 84 रुपये 12 पैसे फी किलोग्राम हो गई है। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव से नई दिल्ली में मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नायडू ने कहा कि उन्होंने रियासत से मुतालिक अहम तरक्याती तरजीहात पर तफसीली बातचीत की। वजीर मौसूफ ने सबकी शमूलियत वाली तरक्की और सभी के लिए बेहतर फजाई राबतों के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तसव्वुर के मुताबिक मध्य प्रदेश में हवाबाजी से मुतालिक बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने और इलाकाई राबतों में इजाफा करने की वजारत के अज़्म को दोहराया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में भारत की मर्दों की सरकर्दा जोड़ी सत्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। उन्होंने 21-12 21-13 कामयाबी हासिल की। इस जोड़ी ने जापान की ताकोमी नोमुरा और युइची शिमागोमी को शिकस्त दी। खवातीन के सिंगल्स में दुनिया की 12वें नंबर और ओलंपिक्स में 2 बार तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु ने जापान की अकाने यामागोची को क्वार्टर फाइनल में 21-19 18-21 और 15-21 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूजबी में तवानाई से मुतालिक तावुन और दो तरफा तिजारत पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दिफा, पेट्रोलियम और सरमायाकारी के मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमतनामे किए। नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए खारजा की 2026 की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस्लाहशुदा और मौसर कसीर मुल्की निज़ाम के मकसद को आगे बढ़ाने में भारत के अज़्म को दोहराया है। एनटीए नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान 21 जून को कराएगी। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के अमल में इंसाफ और शफाफियत की यकीन दहानी कराई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: खबरों तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी। प्रोग्राम चल रहा है फौजी वीरां लई। इस दे नाल ही सुनदे आं अज दे प्रोग्राम दा अगला गीत सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: की कहा तुहाडी लॉटरी निकली है, टिकट खरीदी सी नहीं? अच्छा, तुहानू फोन आया कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया, ते हुण आधार नंबर पैन नंबर ते अकाउंट नंबर देके पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको, अजिहा ना करना, ए धोखा हो सकदा है तुहाडी निजी जानकारी चुराउण दा। चौकस रहो, जागरूक बनो, कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसे नाल सांझी ना करो।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਰੀਚਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ।

0: ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और बिंदन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।

0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग्ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा।

0: 5-15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
2: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमानन नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं।

0: ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के चार भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी दो बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दे 2:03 हो रहे ने। हुन पेश है जी प्रोग्राम रंगली धरती। अज दे इस प्रोग्राम विच आओ सुनदे हाँ राम लाल टोगरी दी आवाज़ विच एक गीत।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक बार फिर स्वागत है जी प्रोग्राम रंगली धरती विच। तुसीं सुन रहे हो प्रोग्राम रंगली धरती विच राम लाल टोगरी दी आवाज़ विच लोक गाथा जैमल फटा।

यासुदेव हाथ बुलाया रुकाली की बांशा सैदे हाथ बुलाया सैद खां लेके रुका तुरपियां उन्होंने चिरना लाया एक कदम कदमी चल के जय मलकुल आया कहिंदा तैनू रा

चलो जी, पढ़ते हैं अगली चिट्ठी जो कि सानू भेजी है मेहरामपुर तो। फौजी मक्खन सिंह, बूटा मनी, कुलविंदर कौर, नीलम, ज्योति, सुरप्रीत, नन्नू, डब्बू, नवराज सिंह, दमनप्रीत सिंह। अगली चिट्ठी भेजी है सानू सहानपुर तो सोनाली, आशा, सुरेश, नारंग, रितेश, यशिका, राहुल, गगन। संगरूर तो भेजी है जी अश्वनी।

प्रियंका, पूजा, विनोद, तुषार, सुषमा, महेश, जशन, विनोद। अगली चिट्ठी पे जीएससी सानू फजिलका तो अमन वर्मा, सिद्धक वर्मा, कीर्ति वर्मा, कृष्णा रानी ते उन्हां दा सारा परिवार। इन्हां सारे दी पसंद च असीं अगला गीत लगान लगे हां। गुरनाम भुल्लर दी आवाज़ विच आओ सुनदे हां गीत।

लुधियाना तो भेजी है विनोद, माधवी, प्रशिष्ठा, स्वर्णलता, गुरु सिमरन, आशा रानी, अशोक, सतीश, हरीश। राजपुरा तो भेजी है हरदीप सिंह, जगबीर सिंह, ज्वाला सिंह, धर्मवीर, गुरु साहिब सिंह। नच्ची जो साढ़े नाल उहदी हर अदा दिल लै गई, टोल दी ताल ते जदों हस पई महफिल सारी रौनकां नाल भर गई। सुनदे हाँ हंसराज की आवाज़ विच ये गीत।

0: तन पल चसा कड़ी पहर तन तन थित सु वार सपागे तन तन द्योह रात है पख माह रुत सम्मत जागे तन अपीच नक्षत्र है काम क्रोध अहंकार त्यागे तन तन संजोग है अठसठ तीरथ राज बिरागे उही पल उही कड़ी उही पहर उही दिन उही थित उही वार सुपागा है जिस समय वो प्रभु चेते आवे। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी अंदर समय दे परिवर्तन की बात की गई है, रुत्तां महीनों दे परिवर्तन की बात की गई है। श्री बारह माज बाणी विच पंचम गुरदेव साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने यह समा सफल करन दे लई प्रेरणा दिती है। आओ सरवण करदे हां श्री बारह माज विचों इस महीने का पाठ ते व्याख्या। पाठ ते व्याख्या कीती है ज्ञानी संत सिंह मस्कीन होरा।
1: हर जेठ जुड़न दा लोड़िए जिस अगे सब निवन हर सज्जन दावण लग्या किसे न देई बन माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायणे जेते मन भावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते आपने से कहिए धन आपन लिया जे मिले विछुड़ क्यों रोवन साधु संग परापते नानक रंग माणन हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके भाग मथन।
2: जेठ दा महीना आरंभ होंदा है। जेठ दा मतलब है वड्डा। जेठ दे महीने विच दिन बहुत वड्डा होंदा है, बहुत वड्डा होंदा है। तो साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान है दिन बहुत वड्डा है, इस वास्ते इस वड्डे दिन नूं मुख रख के वड्डे दी आराधना कर, वड्डे नाल जुड़न।

0: मोहन प्राण मान रागीला बास रहे हो हियरे कै संगे पेख मोहन मन लीला। इस शब्द गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। सत पुरशां दी संगत विच केवल एक अकाल पुरख दे नाम दी ही आराधना हुंदी है। भाई गुरदास जी दे शब्दां विच साध संगत विच उस अकाल पुरख दा निरंतर नूर वरदा रहिंदा है। सुनदे हां डॉक्टर इंदरजीत सिंह वासु होरां पासों वार्ता, साध संगत अस्थान जगमग नूर है।
1: ये फरमान सिख धर्म दे व्याख्याकार भाई गुरदास जी दा है, जो उन्हां दी तीजी वार दी दसवीं पौड़ी सभायमान है। इस कथन विच साध संगत दी नूरानी प्रकृति ते दगदे सरूप बारे रोशनी पाई गई है। साध संगत दे स्थान नूं सिख धर्म विच गुरद्वारे दा नाम दिता गया है, जिस तो भाव गुरु अथवा परमेश्वर दे द्वार तो है, जिथों रब दा नूरी ज्ञान संसार नूं वंडिया जांदा है। इसे नूरी ज्ञान करके ये स्थान हमेशा जग मगाउंदा रहिंदा है। ये ज्ञान साध संगत विच हुंदियां तीन धार्मिक क्रियावां तो उत्पन्न हुंदा है, जो परमात्मा दी कथा कीर्तन ते अरदास नाल संबंधित हुंदियां हन। प्रभु कथा ब्रह्मंडी चेतना पैदा करती है। स्वामी दी सिफ सलाह दा कीर्तन एकाग्रता दा स्रोत बनता है, ते अरदास गुरु चेतना सिख इतिहास दी चेतना ते सरबत दे भले दी विश्व चेतना प्रति जागरूक करती है। ये तिन्ने क्रियावां तो संगत विच दैवी वातावरण उत्पन्न हुंदा है। मनुख निरा पाप दा पलंदा नहीं, सगों नेकियां दा स्वरूप भी है। वह जिथे काम क्रोध का नगर है, उत्थे हरि का भी निवास स्थान है। जिथे उसके अंदर मायक तृष्णा है, उत्थे हरि दे नाम की बनास्पति भी मौली हुई है। इस संबंध में गुरबाणी के फरमान हैं, काम क्रोध नगर बो भरिया, हरिमंदर ये शरीर है, भीतर अगन बनास्पत मौली सागर पंडे पाया। शरीर की समुची प्रकृति का ज्ञान मनुख नूं आशावादी बनाउंदा है, ते उह सतगुर दी अगवाई विच अपनी मानवता नूं दिव्यता विच बदलन दे मार्ग ते पै जांदा है। सतगुर दा शब्द एक जग दा दीपक है, जो मनुख दे दिल दी अंधेरी रात नूं उजली प्रभात विच बदल दिंदा है। उस दा अंदरला संसार ज्ञान नाल नूरो नूर हो जांदा है। सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिनसो अंधकार ते मंदर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। भाई गुरदास जी अनुसार साध संगत मान सरोवर है, जिथे गुरमुख रूपी हंस प्रभु नाम दे मोती चुगदे हन। भगत कबीर जी अनुसार ये बैकुंठ धाम है, जो सारे सुखां दा सोमा है। गुरु रामदास जी अनुसार ये प्रभु दे गुण सीखने लई एक पाठशाला है।

0: साध संगत संसार दे जहरीले वातावरण विच जीवन अमृत दा जखीरा है, जिथे केवल ते केवल परमात्मा दी सिफत कीती जांदी है ते मनुख नू हरेक किस्म दी मथाजी तो मुक्ति मिलदी है। इस संबंध विच कुछ गुरबाणी दे फरमान ए हन, सतसंगत सतगुर चाटसाल है जित हर गुण सिखा, आस पास बिखुआ के कुंटा बीच अमृत है पाई रे। सतसंगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है। साध संगत मनुख लई अनेक बरकतां अनेक सुखां दे पैकेज दी तरह है। पवित्र संगत नाल मनुख दे विचार विहार ते आहार भी पवित्र हो जांदे हन। जीवन विच जबत ते अनुशासन पैदा हो जांदा है। साध संगत एक शब्द की टकसाल है जिस विच मनुख दी सुरत मत मन ते बुद्ध घड़ी जांदी है। उस विच सुंदर चेतना सुंदर अकल सुंदर जज्बे ते सुंदर सोच का प्रकाश हो जांदा है। उत्तम संगत नाल मनुख उत्तम हो जांदा है। उत्तम संगत उत्तम होवै गुण को तावै अवगुण तोवै। साध संगत का मिलाप रब का मिलाप है, क्योंकि इस विच प्रभु रंग विच रंगे हुए रंगले सज्जण मिलते हैं जिन्हां विच अकाल पुरख वसदा है। सतसंगत वड्डे भागां नाल मिलदी है। गुरबाणी दे फरमान साध संगत की महानता नूं स्पष्ट करते हैं। मिल सतसंगत खोज दसाई विच संगत हर प्र वसे जियो, वड भागी हर संगत पावै भागहीन भरम चोटा खावै, बिन भागां सतसंग न लभै विण संगत मैल भरीजै जियो। साध संगत की संस्था का आरंभ गुरु नानक देव जी ने किया। उन्होंने इस नूं श्रेणी रहत समाज के रूप में उसारिया जिथे सारे लोग रल मिल के रहण का वल सिखते हैं। उन्होंने जात पात छूत छात ते पदवियां दे ख्यालां नूं फजूल दसिया। उन्होंने प्रेरणा दित्ती कि इको एक सारियां विच रब्बी अंश है जो उन्होंने वजूद नूं भी कायम रखती है ते उन्होंने सांझीवालता विच भी बनी रखती है। जिवें फक्कड़ जाति फक्कड़ नाओ सभना जियां इका छाओ अते सभे सांझीवाल सदायन तूं किसे ना दिसे बारा जियो। गुरु नानक देव जी अनुसार सिख धर्म के विकास का कारण गुरसंगत ते गुरबाणी है। गुरु नानक देव जी दे अणथक प्रचार दे यतना सरका हरेक घर धर्मसाल दा रूप बन गया जिथे कीर्तन दे प्रवाह चले। अचल वटाले जोगियां नाल गोश समय गुरु जी ने उन्हां दे पुछण ते दसिया कि उन्हां कोल गुरबाणी ते संगत तो बिना होर कोई करामात नहीं है। जिवें गुरसंगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई। गुरु दियां साजियां संगतां ने हौली हौली एक पंथ दा रूप लै लिया जिस दा प्रमुख आदर्श गुरु प्रति आत्म समर्पण है, क्योंकि गुरु दी शरण ही मनुख दे मायक बंधन कट सकती है। ए संबंधियां दे मोह दियां जंजीरां भरमां दी पटकण पाप पुन दी तमीज़ दा निखेड़ा करन वाली सुरत प्रदान करदी है। अंत ते ए कहा जा सकदा है कि साध संगत दा स्थान रब दी नूरी होंद ते उस दे नूरी ज्ञान नाल भरपूर है। ये मनुखी जीवन दे अंधेरे पक्खां विच प्रकाश उत्पन्न करता है। एक ऐसा सचखंड है जो अंदरली जोत नूं होर भी प्रचंड कर दिंदा है। साध संगत विच गुर शब्द दी विचार जीवन दे धुंधले राह नूं प्रकाशमान करदी है। साध संगत सिख धर्म दी टकसाल है। ये जीवन दी पुनर उसारी करके इस नूं नदरी नदर निहाल कर दिंदी है। इसे करके भाई गुरदास जी ने कुजे विच समुंदर बंद करदिआं फरमाया, पूरन परम निधान सद भरपूर है, साध संगत अस्थान जगमग नूर है।
1: साध संगत अस्थान जगमग नूर है। ये वार्ता सुना रहे सन डॉक्टर इंदरजीत सिंह वासू। चंगे कर्म करन दी जाच अकाल पुरख दे चरणा विच बेनती करके ही प्राप्त हो जांदी है। तां ते फिर बेनती यही करनी चाहिदी है, ऐसी मांग गोबिंद ते टहल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते। सरवण करदे हां भाई गुरदयाल सिंह अते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

ऐसी मांग गोबिंद ते, टहल संतन की संग साधु का, हर नामा जप परम गते। आप जी सरवण कर रहे सो पाई गुरदयाल सिंह ते उन्होंने रागी जथे वालों गायन किया हुआ यह शब्द।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विनम्रता का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉ जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरत

0: पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलालाउत वितिदसन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343 शरिया 6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आ हुण तुहानूं दस दईए अज रात तक प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां।

0: सलाम जिंदगी सुनोगे रात 8 बजे, 9:30 बजे सुनोगे प्रश्न चिन्ह च, सौंदर्य प्रयोगिताएं एक अवलोकन पर परिचर्चा, चर्चाकार ने सुमन वर्मा, निधि शर्मा ते राजीव बावा। रात 10:02 ते तुई सुनोगे मिक्स मेलोडी प्रोग्राम सुरछनकार। 10:30 बजे होएगा प्रोग्राम सरगम। शाम 6:20 ते सुनोगे प्रादेशिक खबरां। 7:30 ते होणगियां पंजाबी च खबरां। 8:45 ते दिल्ली केंद्र तो सुनोगे समाचार संध्या। 9:00 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 बजे स्पॉटलाइट। रात 11:00 बजे सुनोगे दिल्ली केंद्र तो हिंदी समाचार। 11:05 ते अंग्रेजी च समाचार। ए सी अज रात तक प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समा।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या

मैं समझदा हाँ कि जदों नवजात शिशु का जन्म हुंदा है तां उह बच्चा सारे संसारिक बंधना तो मुक्त हुंदा है। नवें जन्मे बच्चे नूं दुनियादारी अते परिवार नाल कोई लगाव नहीं हुंदा। नवा जन्मा बच्चा अमृत दा भंडार हुंदा है। उस बच्चे ते माया दा कोई असर नहीं हुंदा। तां ही तां उस बच्चे नूं परमात्मा दा रूप कहा जांदा है। साडे समाज दी बनावट अजिही है कि इत्थे हर एक परिवारक रिश्ते नाते दी आपो अपनी पछाण अते अहमियत है। रिश्ते नात्या तो बिना साडे समाज विच किसे परिवार दी होंद दी कल्पना नहीं कीती जा सकती। मेरा ख्याल है कि इस होंद नूं कायम रखन विच भारतीय औरतां सब तो वध भूमिका निभाउंदियां हन। बहुत सारी भारतीय औरतां आपो अपने परिवारां प्रति बहुत सुहिरद ते समर्पित हुंदियां हन। उह परिवारां दी बुनियाद हुंदियां हन अते परिवारक रिश्तियां नात्यां दी तंदां नूं मजबूत करन लई अपनियां रीझां खुशियां अते सुख आराम दी कुर्बानी देन तो भी पिछे नहीं हटदियां। रब दी याद विच समा गुजारना परिवार दी एकता कायम रखन दा सब तो चंगा तरीका है। जदों अपने बच्चियां नाल खास करके इस तरह समा गुजारिया जांदा है तां इस दे चंगे नतीजे निकलदे हन। पर सानू यह नहीं सोचना चाहिदा है कि जदों तुहाडे कोल समा होएगा तां तुसी इस तरह करोगे। तुहानू इकट्ठे वक्त गुजारन लई समा कढ़ना पवेगा। एक बहुत ही जरूरी चीज़ यह है कि असी अपने परिवारां नाल चंगे माहौल विच बाकायदा धर्म ग्रंथ की स्टडी करिए। बच्चियां नू सवाल पूछ के मापे उन्हां दे दिल की गल जान सकते हैं। सच्चाई विच टीचे बनाउण द्वारा परिवार रूहानी तौर पर मजबूत हुंदा है। इसलिए मापियां नू अजिहे टीचे बनाउण विच मदद देनी चाहीदी है। परिवारक मैंबरां च जो मापियां दा दर्जा है वह किसे होर नू प्राप्त नहीं हो सकता। वह साडे लई एक बेशकीमती नियमत हन। लिहाजा उन्हां दा खास ख्याल रखना चाहीदा है। सानू अपनी जिंदगी जीन दे तरीके च इस गल नू जरूर शामिल करना चाहीदा है कि असी अपनी मसरूफ जिंदगी विच्चों कुछ वक्त अपने मापियां दी सेवा लई जरूर कढ़ीए तां जो साडा परिवार एक खुशहाल अते मिसाली परिवार बन सके। सानू अपने परिवारक रिश्ते बहुत ही चंगे ढंग नाल निभाउणे चाहीदे हन। इस नाल साडे जीवन च एक सकून भी आएगा अते सानू खुशी भी महसूस होएगी। परिवार नू सच्चाई विच मजबूत रखना भी बेहद जरूरी है। बुद्धवान मापे जानते हैं एक हसन का वेला है अते एक नचन का वेला है। बच्चियां दे मन अते शरीर नू तकड़ा करन लई आराम अते चंगे मनोरंजन लई समा कढ़ना भी जरूरी है। इंसान नू रब दा भय रखन लई जवानी च तैयारी करनी चाहीदी है। सच तां इह है कि जॉइंट फैमिली दा सिस्टम हुण खत्म हुंदा जा रहा है अते उसदी थां इकल्ला परिवार वाला सिस्टम आम हुंदा जा रहा है। इस तनावपूर्ण जीवन च सानू जॉइंट फैमिली ही हर सुख ते हर समस्या दा हल दे सकदी है। जॉइंट परिवारां दी सब तो वड्डी विशेषता यह है कि उस नाल सानू जज्बाती अते नैतिक सहारा मिलदा है। घर च बजुर्गां दी मौजूदगी एक सलाहकार दा काम करदी है। इकल्ले रहण वाले परिवारां च जदों तक बच्चे छोटे रहिंदे हन उदों तक पता नहीं चलदा, पर उन्हां दे स्कूल जां कॉलेज जाना शुरू करन ते मापियां नूं इकल्लेपन दा अहसास होना शुरू हो जांदा है। सानू परिवार च इस तरह रल मिल के रहना चाहिदा है कि साडा जीवन केवल अपने लई ही नहीं परिवार दे हर एक मैंबर लई फायदेमंद होना चाहिदा है। इसलिए कहा जांदा है कि परिवार च आपस च रल मिल के रहन नाल असी एक दूजे तो सानू सीखन दा मौका मिलदा है। असी अपने वड्डियां तो भी सीखते हाँ, असी अपने बुजुर्गों तो भी सीखते हाँ, तो यह चीज़ साडा परिवार अगे जा के एक ऐसी मिसाल बन जाता है कि लोग मिसाल देंदे हन कि फलाना दा परिवार अज इस काम लई अगे है, अज इस काम लई अगे है। लोग साडे परिवार की सिफत करते हैं। जेकर साडे परिवार विच एका नहीं है, साडे परिवार विच इकल्लापन है, तो लोग दलीलां देंदे हन कि उन्हां दा परिवार माड़ा है, उन्हां विच एका नहीं है, लोग साडे तो दूर हुंदे हन। एक लोकां दे अंदर एक नफरत जी पैदा हो जाती है। सो अज भी लोकां नू इस चीज़ की जरूरत है कि अपने परिवार च रल मिल के रहन, लोकां वास्ते एक मिसाल बनन, क्योंकि आन वाली पीढ़ी सानू वेखूगी, साडे बुजुर्गां नू वेखूगी। साडे बुजुर्गां ने हमेशा इन

0: हाँ जी बाल साहब, बच्चों नूं देखो, पशुआं दे विच आपां देखदे आ कि मौसम जदों बदलदा है
1: जी
0: कई तरहां दे दबाव, कई तरहां दे संकट समस्यावां उन्हां दे सामने भी आउंदियां ने,
1: जी
0: रोग भी आ जांदे ने
1: जी।
0: सो इन्हां सारियां चीज़ां तों आपां ने बचाव करना है। डॉक्टर राज सुखबीर होरां नाल गल्लां बातां सांझियां होईयां, आपां सांझियां करदे आं।
1: सुणा जी,
2: डॉक्टर राज सुखबीर सिंह जी, तुसीं प्रोफेसर गुरु अंगद देव वैटनरी ते एनीमल साइंस यूनिवर्सिटी तों साडे कोल आयो। सब तों पहलों देहाती प्रोग्राम की बैठक च आपां तुहानूं जी आयां कहिंदे आं। डॉक्टर साहब, गल है कि देखो, जिदा आप कहने कि पशु पालन का किता धंधा अज सिरमौर किता धंधा आप सारे जानते हैं, जिन्हों असी कह सकते हैं कि हुण साड़ी फसल बाड़ी साड़ी सहायक धंधा है, ये मुख किता है और किता साड़ा मुख है, प्रमुख है। तो ये जरा जिनी कुताही या बेगौरी या किसी तरह की भी कोई दिक्कत औकड़ साढ़े लिए जी समस्या बन जाती है। सो आप इस करके कहने भी पशुओं का रख रखाव मौसम के हिसाब के नाल, सारिया चीज़ों के हिसाब न, इन प्रबंधकी ढांचा साडा बड़ा ठीक होना चाहिए ताकि पशु नूं किसी तरह की भी कोई दिक्कत मुश्किल ना आवे। हुण जिहड़े मौसम च आपां जा रहे हैं, इन्हां दिनां विच गर्मी का प्रभाव आपां सारे जानदे हां, जीआ जंत सब ते पैंदा है ना, पशुआं ते भी पैंदा है।
1: बिल्कुल जी,
2: कई बार पशु जिहड़ा हीट स्ट्रैस दे विच आ जांदा है, आपां सारे जानदे हां। हुण किहड़ी सीमा मतलब जां किहड़ी हद है जिहनूं आपां हीट स्ट्रैस मानदे हां, जिदा हुण आपां आम देख तौर पर देखते हैं टैंपरेचर है वह 40 है, 41 है, 42 है, कई थावां ते कित्थे तक जाके या किस

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20

0: ਮਈ 2026 ਤੱਕ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ। ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਬਾਇਓਡਾਟਾ, ਰੰਗਦਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਤਾ ਏ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੇਤਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇੜੇ BMC ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 20 ਮਈ 2026 ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के जलंधर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सबरंग में अफसाना बोझ, अफसाना निगार डॉक्टर मोहम्मद सालिक जमील।
2: अफसाने का उन्वान है बोझ। पिछले एक हफ्ते से सर्दी पूरे शबाब पर थी। दिन इस कदर छोटे हो गए कि पलक झपकते ही खत्म हो जाते, लेकिन रातें तवील और भोजल, शायद सूरज भी जल्द ही थक जाता था। शाम के 6 बजते ही अंधेरा छाने लगता। इशा की नमाज के बाद गली, मोहल्ले और बाजारों पे सन्नाटा छा जाता। सिर्फ मूंगफली और अंडों के खवांचे वाले ही सड़कों पर खड़े नजर आते थे। आज सलाम दिन को कुछ ज्यादा ही सर्दी महसूस हो रही थी। वो इशा की नमाज पढ़कर आते ही बिस्तर पर लेट गया और लहाफ में लिपटा नींद के मजे लेने लगा। कई घंटे की नींद के बाद अचानक उसकी आंख खुल गई। वो चारपाई पर करवटें बदलता रहा, लेकिन उसे नींद ना आई। उसने लहाफ से मुंह बाहर निकाला और कमरे में फैले अंधेरे में देखने की कोशिश करते हुए सामने दीवार पर लगी घड़ी पर नजरें जमा दी, लेकिन उसे घड़ी की सुइयां नजर ना आई। लहाफ की गर्मी से बाहर निकलना सलाम दिन के बस की बात ना थी। आखिर चंद मिनट यूं ही पड़े रहने के बाद बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर रजाई से बाहर निकला और जीरो का बल्ब रोशन किया तो उसे देखकर बड़ी हैरानी हुई कि रात का 1 ही बजा था। कमरे के दूसरे कोने में 3 चारपाइयों पर उसकी बीबी और बच्चे सो रहे थे। उसने चंद कदम आगे बढ़कर खिड़की खोलकर देखा तो हवा का एक तेज झोंका उससे टकराया और वो ठुठर गया। उसे धुंध से अटे आसमान और अंधेरे के सिवा कुछ नजर न आया। वो खिड़की बंद करके बिस्तर पर वापस आ गया और सराहने पड़े बीड़ी के बंडल में से एक बीड़ी निकालकर होंठों में दबाई और माचिस से तीली निकालकर सुलगाई और लंबे लंबे कश भरने शुरू कर दिए। फिर एक के बाद एक कई बीड़ियां अपने अंजाम को पहुंचती गई। यकायक उसे अपने घर के बाहर के गेट पर कुछ खटखट की आवाजें सुनाई दी। सलाम दीन ने बीड़ी जमीन के सीने पर मसलते हुए एक मोटी सी गाली दी। ये बग्गू इस जन्म में मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, ठहर आज तो तेरी खैर नहीं। सलाम दीन बुड़बुड़ाता हुआ अपनी धोती को दुरुस्त करता बिस्तर से बाहर निकला और कंबल ओढ़कर कमरे से निकल गया। सलाम दीन के एक बीघे में फैले अबाई घर में सिर्फ 2 कमरे थे। घर के कोने में चूल्हा था जिसके इर्द गिर्द मिट्टी की छोटी छोटी दीवारें थी, बाकी सारा सहन था। मेन गेट के एक तरफ छोटा सा झोंपड़ा था जिसके इर्द गिर्द प्लास्टिक की काली चादर तनी हुई थी जो उसमें बंधे बैल और बकरियों को ठंड से बचाने का काम कर रही थी। कमरे से बाहर आकर वो कुछ टटोलने लगा और चंद ही लम्हों के बाद एक मोटा सा डंडा लेकर गेट की तरफ बढ़ा और उसकी कुंडी खोलकर बाहर निकल गया, लेकिन वहाँ कोई ना था। उसने बाहर जाकर दाएं बाएं देखा। कोहरा इस कदर छाया हुआ था कि उसे अपने इर्द गिर्द कुछ नजर नहीं आ रहा था। सलाम दीन अपने माथे पर हाथ मारते हुए अपनी बेवकूफ़ी पर जेरे लब मुस्कुराया और घर के अंदर लौट आया और गेट के साथ ही बने झोंपड़े के गिर्द तनी चादर उठाकर अंदर चला गया जिसमें हल्की रोशनी का बल्ब रोशन था। झोंपड़े में एक तरफ एक बैल बंधा था जिसके ऊपर एक मोटा सा कंबल डाला हुआ था। दूसरे कोने में एक बकरी अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ सिमटी पड़ी थी।

सलामुद्दीन ने बैल का कंबल ठीक किया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। सलामुद्दीन बैलगाड़ी में मिट्टी ढोने, नई और पुरानी इमारतों का मलबा लाने और ले जाने का काम करता था। इसके अलावा गल्ला मंडी में उसे कभी कभार बोरियां गोदाम ले जाने का काम मिल जाता था। सलामुद्दीन ने अपनी ज़िंदगी के 20 साल अपने इसी ख़ानदानी काम की नज़र कर दिए थे। आज से 20 साल पहले उसने इस काम में खूब चांदी कमाई। इस ज़माने में ट्रैक्टर, ट्रक वगैरह बहुत कम थे, या यूं कहिए कि ना के बराबर थे। इमारत बनाने का सारा सामान लाने और ले जाने का काम बैलगाड़ी से ही लिया जाता था। बाजारों में भी इसका खूब इस्तेमाल होता था। अब छोटे तीन पहिया लोडिंग ऑटो भी शहर में आ गए हैं, जो छोटे छोटे बाजारों में भी दाखिल हो सकते हैं। नतीजा ये हुआ, बैलगाड़ी का काम बहुत कम रह गया। इस पूरे इलाके में सलामुद्दीन वाहिद बैलगाड़ी वाला था। पूरे शहर में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बैलगाड़ियाँ ही रह गई थीं। पिछले 6 माह से तो सलामुद्दीन को बाज़ार में हफ्ते में सिर्फ 1-2 दिन ही काम मिलता था, क्योंकि मालकों और भट्टा यूनियन में किसी बात पर ठन गई थी। भट्टे बंद हो गए थे, ईंटों के दाम दुगने हो गए और नई इमारतों की तामीर रुक गई। नतीजतन हज़ारों मजदूर बेरोजगार हो गए थे, जिनमें सलामुद्दीन भी शामिल था। बेचारा सलामुद्दीन तो अपने बैल के पेट का दोजक भरते भरते कर्जदार हो गया था। उस दिन बहुत बारिश हुई थी। शहर की सीमेंट से बनी सड़कें बारिश के बाद बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। बारिश से तकरीबन 1 घंटा बाद सलामुद्दीन अब मिट्टी से भरी गाड़ी ला रहा था कि उसके चहेते बैल बग्गू का पाँव फैसल गया था। इसके बाद वो अपनी 4 टांगों पर चल ना सका। कई माह के इलाज के बाद बग्गू लंगड़ाकर चलने के काबिल हो गया था, लेकिन अब वो किसी काम का नहीं रहा था। सलामुद्दीन कुदरत के सिस्टम के आगे बेबस हो गया और अपनी बीवी के बचे कुचे जेवर बेचकर एक नया बैल खरीद लाया। इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो बग्गू का भी बोझ उठा सकता। सलामुद्दीन ने दिल पर पत्थर रखकर एक दिन बग्गू को दाना मंडी के आवारा जानवरों के झुंड में छोड़ दिया। लेकिन बग्गू सलामुद्दीन और अपने घर को भूल ना सका। उसने पूरे 15 साल सलामुद्दीन के घर के बोझ को अपनी गर्दन पर उठाया था। उसके घर की एक एक ईंट बग्गू के खून पसीने की कमाई से लगी हुई थी। बग्गू चंद ही माह में बहुत कमज़ोर हो गया था। मंडी में जो लोग शाम को जानवरों के लिए घास ढालकर जाते थे, उसमें से बहुत कम हिस्सा बग्गू को मिलता था। शायद जानवरों में ने भी कुछ इंसानी आदतें अपना ली हैं कि कमज़ोरों का हिस्सा भी खा जाओ। बग्गू लंगड़ा और लागर होने की वजह से दूसरे जानवरों से लड़ नहीं सकता था। जब वो पूरी तरह पेट भरकर खा लेते तो बचा कुचा माल ही बग्गू के हिस्से में आता। पेट की आग पूरी तरह ना बुझने की वजह से वो सब्जी और दूसरी खाने पीने की दुकानों पर मुंह मारता था, जिसके एवज में उसे खूब मार खानी पड़ती थी। बग्गू का मखमली जिस्म, जिसे कभी सलामुद्दीन साबुन से धोया करता था, जगह जगह से जख्मी हो गया था। उसकी खाल जगह जगह से फट गई थी, जिससे हर वक्त खून रिसता रहता था और बेशुमार मक्खियाँ भिनभिनाती रहती। बग्गू ने भी अपने बचाव की तरकीब तलाश कर ली थी। अब वो भी सींग मारने लग गया था। जब भी बग्गू को मौका मिलता, सलामुद्दीन के घर के बाहर आकर बैठ जाता। सलामुद्दीन उसे गालियां देता और डंडे मार मार कर भगा देता, मगर वो मौका पाकर अंदर भी घुस आता और सलामुद्दीन के नए बैल से भिड़ जाता था। सलामुद्दीन बग्गू से बहुत दुखी हो चुका था। आखिर तंग आकर सलामुद्दीन कल उसे शहर से दूर किसी देहात में छोड़ आया था। आज सर्द रात में दरवाजे की खटखट सुनकर वो गुस्से से बदहवाश हो गया था। उसे ऐसे लगा था जैसे बग्गू फिर आ गया हो। वो दोबारा लेट चुका था और देखते ही देखते वो नींद की आगोश में चला गया। सोते हुए भी बग्गू और बैलगाड़ी उसके जहन पर सवार रही। वो ख्वाबों की दुनिया में भटक गया। उसने ख्वाब देखा जैसे वो बहुत ज़यीफ हो गया हो और उसकी दाढ़ी सफ़ेद, चेहरे पे झुर्रियाँ नमूदार हो गई हैं। वो मिट्टी के टुकड़े भर भर कर बैलगाड़ी में डाल रहा है कि अचानक उसका पाँव फिसल गया और वो धड़ाम से गिर पड़ा और उसकी बाएँ टांग टूट गई और कई जगह चोटें भी आईं। अब वो सरकारी अस्पताल में पड़ा करा रहा है। उसकी टांग पर ऑपरेशन के बाद प्लास्टर चढ़ा दिया गया है। कई माह इसी तरह लंगड़ाकर चलने के बाद उसका प्लास्टर खुला, लेकिन वो ठीक तरह से चल नहीं पाया, यानी वो अब नाकारा हो गया है। वो किसी काम का नहीं रहा, बस सारा दिन बेकार घर में बैठा रहता है। वो अपने बेटों पर बोझ बन गया है। उसके बेटे उस बोझ से छुटकारा चाहते हैं। कुछ पल बाद सलामुद्दीन की आँख खुल गई और दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। जिस्म ठंडा पड़ गया। वो हांफता हुआ उठकर बैठ गया और चादर में छुपी अपनी टांगों को टटोलने लगा। उसे तसल्ली हुई कि टांग सलामत है, प्लास्टर और चोट का कोई नामो निशान तक ना था।
वो माथे को

0: पकड़कर बैठ गया। चंद लम्हों बाद उसे फिर दरवाज़ा हिलने की आवाज़ सुनाई दी। वह अपने दिमाग का वहम समझकर बैठा रहा, लेकिन जब उसे दरवाजे पर मसलसल खट खट सुनाई देती रही तो वो तेज़ी से बिस्तर से बाहर निकला और कमरे में कोने में पड़े बर्तन टटोलने लगा। और उसे पल भर के लिए अपने वजूद पर गुस्सा आया। जिस बैल ने उसे और उसके बाल बच्चों को बरसों दाल रोटी खिलाई, उसे अपाहज और बेसहारा छोड़कर उसने खुद गर्जी का सबूत दिया है। सलामुद्दीन ने सर पर हाथ फेरा, बच्चों पर नज़र डाली और रात की चंद बची कुची रोटियां लेकर बाहर की तरफ चल दिया। जैसे ही उसने गेट खोला, सामने बग्गू खड़ा पाया, जो डर के मारे उसे देखकर तेज़ी से पीछे हटने लगा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। सलामुद्दीन हाथ में रोटियां लिए ठगा सा खड़ा रह गया। उसकी आंखों से नदामत के आंसू छलक पड़े।
1: अभी आप सुन रहे थे सबरंग में अफसाना भोज। अफसाना निगार थे डॉक्टर मोहम्मद सालिक जमील।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 854 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स, FM 103.6 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दाए जलंधर केंद्रे। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। रात दे 8 बज रहे ने। पेश है प्रोग्राम सलाम जिंदगी।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है। तुहानू जरूर

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन के फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आई

0: आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबूधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये

0: बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
1: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
2: Under the three pillars of BRICS strategic partnership.
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक

0: मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई U17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने U17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई U15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। IPL क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन के फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई U17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Corps rape and murder case. Met

0: तो मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली ने कहा कि आप अप्लाई कर दो, तो मैंने अप्लाई किया। और उस दिन के बाद मिसेस इंडिया की जर्नी मुझे पता भी नहीं चला, एक के बाद एक के बाद सारे मेरे राउंड्स क्लियर होते रहे। पहली 25,000 एप्लीकेशंस आई ऑल ओवर इंडिया से, फिर उसमें सिलेक्शन हुआ, फिर मुझे पंजाब के ऑडिशंस की कॉल आई चंडीगढ़ के लिए, मैंने चंडीगढ़ ऑडिशंस दिए। मैं चंडीगढ़ ऑडिशंस दे के भूल गई, मुझे लगा कि कहाँ पे होगा ये। और कुछ दिनों बाद मुझे फाइनलिस्ट की मेल आती है, वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही गौरवमयी पल था मेरे लिए। और ये जो मेरी जर्नी रही है मिसेज़ इंडिया के दौरान, जो पहले हमने तैयारी की और उसके बाद की, ये मेरे लाइफ के, मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से है। क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत उभारा, अपने आप को मैंने बहुत सारा जो है वो चीज़ें की हैं
1: जी। और जानना चाहते हैं सुमन जी, जैसे कि आप सुंदर्य विशेषज्ञ हैं, आपके साथ बहुत जो हैं गर्ल्स आती होंगी, बहुत सारे शायद बॉयज़ भी आते होंगे, किस तरह की सुंदरता या सौंदर्य को हम महत्व देते हैं?
2: धन्यवाद मैम। इसमें यह है कि जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं, बॉयज़ गर्ल्स जो भी आते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर वो अच्छे से ग्रूम करके अपने आप को ग्रूमिंग करवाते हैं तो उससे क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उनका खुद को दिखाने के, खुद को प्रेजेंट करने के लिए एक आत्मविश्वास बनता है। तो अच्छा लगता है उनको अपने आप को ग्रूम कराना।
1: पर ऐसा होता है ना कि उनके अंदर जो विश्वास होता है वो पैदा होता है, या उनके अंदर होता है कि देखा देखी हो जाता है कि नहीं हमें अच्छा लगना है, हमें इस तरह का कॉस्मेटिक यूज करना है, कई बार गलत कॉस्मेटिक्स भी यूज हो जाते हैं।
2: होता है पर बहुत कम ही ऐसा होता है। अगर वो अच्छी जगह पर जाते हैं और अच्छा कॉस्मेटिक यूज करवाते हैं तो उनकी जो ब्यूटी है वो और इन्हांस होती है, तो जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है।
1: तो राजीव कुमार बाबा जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आप भी समाज पर प्रभाव जो है कैसा आप देखते हैं, कैसे इसमें आप सोचते हैं कि बॉयज़ या गर्ल्स, जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, समाज पर क्या असर पड़ता है और माँ बाप का भी क्या इसमें रोल होता है?
3: देखिए मैम, मेरा ये मानना है कि समाज पर इसका अच्छा असर ही पड़ता है। कुछ बुरे एस्पेक्ट भी हैं लेकिन हम अच्छे के बारे में ज़्यादा सोचें तो अच्छी बात है।
1: बिल्कुल,
3: आजकल के ज़माने में ये है कि कम से कम लड़कियों के साथ लड़कों को भी, दोनों को ही अपने आप को उभारने का एक मौका मिल रहा है। तो अच्छा दिखना कोई बुरी बात नहीं है, उससे आत्मविश्वास बढ़ता है, अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि उनका सारा ध्यान इसी एक चीज़ पर ना हो जाए, जैसे पहले डिस्कशन कर रहे थे हम कि स्टडी भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, अपना करियर भी ज़रूरी है, परिवार, माँ बाप, सब कुछ देखना ज़रूरी है। थोड़ा ये है कि बच्चे किसी एक चीज़ पर ही ध्यान ना देने लग जाएं कि मुझे सुंदर दिखना है, उसके लिए कोई भी कॉस्मेटिक, कोई भी तरीका, साम दाम दंड भी, तो वो थोड़ा ये एक बुरी चीज़ है। बाकी मुझे तो ये लगता है कि ये एक अच्छा तरीका है अपने आप को दिखाने का, अपने आप को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का, जो कि पहले नहीं था, तो मैं इसे सकारात्मक तौर पर लेता हूँ।
1: और जानना चाहते हैं निधि जी, जैसे आपने इसमें हिस्सा लिया है, आप सौंदर्य प्रतियोगिता विजेता भी रही हैं, तो आपके परिवार का सहयोग और साथ साथ में आपको देखकर इंस्पायर हुआ हुआ कोई इंस्पिरेशन मिली हो, प्रेरणा स्रोत आप बनी हो किसी के लिए, आपसे सीखा हो किसी ने कुछ?
0: बिल्कुल, जैसे कि कहा जाता है कि अ जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। आपको सिर्फ एक कदम लेने की ज़रूरत होती है और भगवान रास्ते अपने आप खोल देता है आपके लिए। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत ही सपोर्टिंग फैमिली मिली है। सभी का ये मेरे से सवाल होता है कि आपको अड़चन आई होगी, आपको किसी का विरोध किया होगा सिंस आई एम मैरिड, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। जितना शायद मैं ये कर पाई हूँ वो अपनी फैमिली के सपोर्ट से ही कर पाई हूँ। मेरे बेटे ने अभी 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं तो मुझे लग रहा था कि मुझे ध्यान उधर भी कॉन्सेंट्रेट करना है, और मेरे बेटे ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया कि मम्मा अगर आप इस बार नहीं कर पाओगे तो आपको ज़िंदगी भर आपको इसका गम रहेगा कि आपको एक मौका मिला था, आप नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि मेरी फैमिली सपोर्ट ही मेरा सबसे बड़ा एसेट था जो मैं इतनी आगे तक मैं उस कॉन्फिडेंस को लेके गई हूँ।
1: जी सुमन जी, आपसे जानना चाहते हैं, आप सौंदर्य विशेषज्ञ हैं जैसे कि हम बातचीत कर ही रहे हैं, तो सौंदर्य प्रतियोगिता में जो लड़के और लड़कियाँ आपके पास आते हैं, आप उनको इन प्रसादनों के बारे में समझाती हैं?
2: तो मैं इनको बोलती हूँ जैसे उनको स्किन थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए, स्किन की केयर करनी चाहिए, अच्छी डाइट के साथ साथ अपनी अच्छी एक्सरसाइज करनी। एक्सरसाइज से क्या होता है कि थोड़ा बच्चों में कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें मायने रखती है, अच्छा कॉस्मेटिक साथ में स्किन केयर।
1: और साथ में ये भी है कि कई ऐसे होते हैं लड़कियां जो डाइटिंग कर लेती हैं और उसके बाद में जीरो फिगर हम कह सकते हैं कि बनाना शुरू कर देती हैं कि नहीं वो ऐसी है तो हम मैं भी एक

0: ऐसे बनो। होता ये है कि जैसे पीछे एक रिसर्च आई थी, एक सर्वे में पाया गया कि जो लड़कियां इस तरह करती हैं, बीमार होती हैं, और पीछे एक
1: जी
0: लड़की जो है सीरियस हो गई और वो बची नहीं। इससे आप क्या अभिप्राय मानते हैं?
1: नहीं, ऐसा तो नहीं है। सूरत के साथ सीरत, जैसे आपने बात की है, ये
0: जी
1: दोनों ही चाहिए हमें।
0: जी जी
1: तो उसके साथ ये है कि ये डाइटिंग का तो काम ठीक नहीं है। चलो, करनी होती है डाइटिंग, उतनी ही करो जितनी कि उनकी बॉडी सह पाए। सो उनको डाइटिंग के साथ साथ अपना पूरा बॉडी का ये सारी
0: ध्यान
1: चीज़ें
0: रखना
1: ध्यान
0: चाहिए।
1: रखना चाहिए। और जैसे कि अपनी पूरे मल्टी विटामिन्स लेने, अपना टाइम पर खाना, उठना, टाइम पर सोना, ये चीज़ें साथ में ज़रूरी होती हैं।
0: और आजकल ये भी है कि मोबाइल पे जो है कई तरह के पैक्स बताए जाते हैं, क्रीम्स बताई जाती हैं, उसे देख के ही बच्चे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। होता है कि उसका उल्टा असर हो जाता है।
1: हाँ जी
0: तो ऐसे
1: जी
0: आप में क्या समझाते हैं उन्हें, अगर बाय चांस कोई आपके पास आ जाता है तो?
1: तो उनको ये चीज़ें बताई जाती है कि आप वो सोशल मीडिया पर ना जाओ, उसके अलावा आप अच्छे से कोई एक्सपर्ट से मिलो। एक्सपर्ट ही उनको सही गाइड कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे आप अपनी स्किन केयर करनी है, और साथ में कॉस्मेटिक, कौन सा कॉस्मेटिक यूज़ करना है। तो सोशल मीडिया ठीक है, एक जरिया है, हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है, पर ये नहीं कि हम उसी उसी के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहें।
0: कोई ऐसा कोई लड़का या लड़की आपके पास आए हो जिन्होंने सोशल मीडिया से देख के क्रीम्स का इस्तेमाल किया हो, फेस पैक का इस्तेमाल किया हो और खराब कर लिया हो
1: हाँ जी,
0: फेस?
1: बहुत बार ऐसा होता है। हर किसी की स्किन सेम तो होती नहीं है, हर किसी की स्किन अलग अलग होती है, किसी की ऑयली है, किसी की ड्राई है। तो बच्चे सोशल मीडिया से देखे अपनी स्किन के ऊपर गलत प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं,
0: जी
1: तो उससे फिर क्या होता है, वो टाइम एक तो ऊपर से मंच पे जाने का टाइम हो जाता है, ऊपर से उनकी स्किन ख़राब, फिर एकदम से हमारे पास आते हैं तो हमें उनको कुछ ना कुछ जल्दी वाला काम करना पड़ता है कि हाँ उनका जल्दी से स्किन ठीक हो जाए। तो यही कहना चाहते हैं कि ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरह डिपेंड नहीं होना चाहिए, तो एक्सपर्ट से ही की राय से ही आपको
0: जी
1: आगे बढ़ना है।
0: जी
1: यहाँ पे
0: तो
1: मैम मैं एक मिथ क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा कि आप किसी को इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशनल, तो अभी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मिसेज इंडिया करके आपको अपना पब्लिक प्लेटफॉर्म मुझे पब्लिक करना पड़ा, तो कितने लोग वो आपको फॉलो करते हैं। पर आज की युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि ये बहुत, जैसे हम कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने, हमें ये लगता है कि इट्स ऑल
0: बहुत
1: ब्यूटी,
0: आसान
1: बहुत
0: है
1: आसान है,
0: जी।
1: ये बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे आज भी याद है अपने वो शब्द, क्योंकि मैंने कहा कि मैं लास्ट स्टेज पे हूँ अपनी PhD सबमिट करने के लिए थीसिस, तो मेरा काफ़ी रुझान वहाँ पे टाइम जा रहा था। तो मैंने एक दिन के बाद अपने घर पे फ़ोन किया, तो मैंने बोला है कि ये तो भाई PhD से भी ज़्यादा मुश्किल ज्यादा मुश्किल
0: है यहाँ पे
1: है
0: लगता
1: ऐसे
0: है।
1: सही
0: और
1: में।
0: बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ यहाँ पे आपकी सूरत जो है मायने नहीं रखती,
1: नहीं
0: बिकॉज मैं
1: रखती।
0: खुद एक ये विनर रही
1: हाँ।
0: हूँ। आपकी सीरत क्या है, आपकी सोच क्या सोच
1: है,
0: क्या है, आपका बिहेवियर क्या है,
1: बिहेवियर
0: बाकी
1: कैसा
0: ये सब
1: है।
0: कुछ
1: हाँ
0: मैटर करता है। तो
1: जी
0: आप सिर्फ एक दौड़ में जो है उसमें ना चलिए, बहुत सारी चीजें, अगर आप अंदर से सुंदर हैं, चेहरे पे जरूर
1: जरूर
0: झलकेगा।
1: झलकेगा और
0: जी
1: झलकता भी है।
0: जी
1: तो बाबा जी आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में?
2: मैडम, मैं बिल्कुल सहमत हूँ निधि जी की बात से। जैसे इन्होंने बताया कि सिर्फ सूरत मैटर नहीं करती, सीरत भी मैटर
0: सिर
2: करती
0: भी
2: है।
0: मैटर करती है।
2: युवा पीढ़ी टीवी पर देखती है या सुनती है, अखबारों में पढ़ती है, वो सिर्फ मेन मेन चीज़ देखते हैं कि हाँ जी कोई कंटेस्टेंट आई, उसने क्या बोला, अपना कैसे उन्होंने अपना प्रेजेंट किया और चले गए। लेकिन वो अगर देखें तो वहाँ पर जजेस उनसे बड़े सवाल पूछते हैं, सामाजिक मुद्दों पर उनकी क्या राय है, आसपास देश में या पूरी दुनिया में जो हो रहा है उसके बारे में वो क्या सोचती हैं, किसी मानवाधिकार के बारे में या किसी चीज़ के बारे में वो कैसे उसके प्रति अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी। तो उनके सारे विचार जाने जाते हैं, हर चीज़ के उनको मार्क्स दिए जाते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। वहाँ रंग रूप तो अकेला रंग रूप मायने नहीं रखता। तो युवा पीढ़ी को ये सोचना चाहिए कि अगर इस फील्ड में भी जाना है तो वो सभी एस्पेक्ट्स पर ध्यान दें, सिर्फ ये नहीं कि मुझे सुंदर दिखना है। आपकी सोच क्या है, मुद्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आसपास आपके माहौल क्या है। जैसे कुछ विश्व सुंदरियाँ जो थी या लड़कियाँ जीती थी, तो मैंने देखा है वो कई ऐसे क्षेत्र जैसे युगांडा वगैरह हो गया, तो अपिया यहाँ भुखमरी वगैरह है, तो वहाँ जाते हैं, सोशल काम करती हैं, उनको देख के लोग प्रेरित होते हैं। तो वो तो एक चीज़ है ना जो मतलब दुनिया को दिख रही है, उसका फ़ायदा है।
0: बिल्कुल।
2: सिर्फ ये नहीं है कि हमें सुंदर दिखना है, हम टीवी पे आ गए या 10-12 फिल्में मिल गई, अपना कारोबार चल गया, तो इतना नहीं होना चाहिए।
0: यानी कि ये कि जो ग्लैमरस लाइफ है वो अट्रैक्ट करती
2: जी, उसके
0: है
2: सभी
0: ना?
2: पहलुओं पर जोर देना
0: बिल्कुल,
2: चाहिए।
0: सभी पहलुओं पर। और
2: हाँ
0: इसमें परिवार का सहयोग कैसे होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि नौजवान वर्ग, लड़के हो या लड़कियां, घर से भाग जाते हैं, कई बार सहयोग नहीं मिलता उनको, कई बार मिल भी जाता है
1: जिद में आके ये आगे
0: जी।
1: बढ़ने के में होता है।
2: वो अभी मैम ने बात बताई, बड़ी अच्छी बात बताई कि उनके बेटे ने उनको इस बारे में इनकरेज किया, तो फैमिली का सहयोग तो

0: होता ही है, लेकिन ये आपने जो कहा कि लड़के लड़कियां घर से भाग जाते हैं, ये कितनी ही खबरें हम तो अखबार में देखते रहते हैं कि बच्चे घर से भाग गए फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनने के लिए, हीरोइन बनने के लिए। तो ये एक बुरा इसका मैं कहूँगा पक्ष है कि जो जिसके जिसके ऊपर विचार होना चाहिए, सिर्फ मेन मेन चीज़ नहीं कि हम क्या हैं या कैसे दिखना है, तो उसके पीछे जो सारी कहानी है, क्या उसका उसका पहलू है, वो सब कुछ जानना ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, मैं राजीव जी से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे कि मुझे लगता है जैसे आज हम इस मंच पे बैठ के हम ऐसे चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे प्लेटफॉर्म से हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी अपने युवा के लिए, बिकॉज वो युवा सिर्फ एक पक्ष देख रहा है, वो दूसरा जो पहलू है उसको नहीं देख पा रहा
2: नहीं
1: है।
2: देख रहा।
1: क्यों, इवन अगर आपको इस लाइन में भी जाना है तो बहुत स्ट्रगल है, मैंने कहा बहुत मेहनत है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तभी आप आगे आइए। तो चाहे वो पढ़ाई है, तो जैसे कि अगर कोई इंस्पायर होता है, मुझे इतने सारे डीएम्स आते हैं, क्वेश्चन होता है, तो मैं सबको पहले बोलती हूँ कि मैंने पहले अपनी पढ़ाई में वो मुकाम हासिल किया है ना, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी टॉप की। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही तरफ है। तो अगर आप सिर्फ बुक अपना जो गुण उनको निखारेंगे, तो आप मेहनत करने के लिए अगर तैयार हैं तो आप डेफिनेटली किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगा।
2: और पुरुषों के लिए क्या अवसर है इसमें, आप क्या समझते हैं बाबा जी?
0: पहले तो मैम ये सिर्फ महिलाओं का क्षेत्र माना जाता था, और ख़ासकर कवियों के लिए होता था कि वो महिलाओं के सौंदर्य बोध पे कविताएं लिखेंगे, उससे कहानियां लिखेंगे। अब ये आप कहीं भी चले जाइए, ब्यूटी पार्लर्स में चले जाइए, अब जेंट्स के लिए बन गए हैं। शादी से पहले लड़कियां अगर तैयार होती तो लड़के भी तैयार
2: लड़के भी
0: होते
2: होते
0: हैं,
2: हैं, उनको भी मेहंदी लगाई
0: तो
2: जा रही है।
0: वो अब अच्छा दिखना सबके लिए एक तरह से कह लीजिए ज़रूरी हो गया है। लेकिन जैसे मैम ने कहा कि सब कुछ जानना ज़रूरी है, सिर्फ ये नहीं कि मैंने अच्छा दिखना है, आपकी सोच क्या है, वही आप जैसे मैम ने बताया कि पहले उन्होंने पढ़ाई में अच्छा किया, तो हर चीज़ में आगे होना चाहिए। अगर मैं दिखने में अच्छा हूँ लेकिन मुझे मेरी पढ़ाई सही नहीं है, या मैं और किसी भी काम में अपने पारंगत नहीं हूँ, तो फिर मैंने अच्छा दिख के क्या करना है। तो मेरी युवा पीढ़ी को यही संदेश है, या उनको यही सलाह है कि वो हर चीज़ पर ध्यान दें।
2: छोटी से बड़ी तक।
1: बिल्कुल
2: है ना, कुछ भी हो, इसमें कहीं भी जाना हो, छोटी से बड़ी तक आप कैसे पहुंच सकते हैं,
0: जी
2: फॉर्म क्या है, इसके रूल्स
1: हाँ
2: एंड
1: जी,
2: रेगुलेशंस
1: बिल्कुल
2: क्या है, इसके बारे में सब कुछ पता होना
3: पता होना
2: चाहिए
0: इसके बारे में,
2: आज
0: पूरा ज्ञान होना
2: के
0: चाहिए,
2: ज्ञान।
0: पूरा स्टडी करना चाहिए उनको, तो ये
2: जी,
0: ज़रूरी है।
2: और आगे इस क्षेत्र में क्या संभावनाएं समझते हैं आप, सुमन जी?
3: आने वाले टाइम में इसका तो बहुत ज़्यादा बच्चों में क्रेज़ बढ़ रहा है दिन ब दिन, तो ये अच्छा भी है, ये मंच बहुत अच्छा है, क्योंकि इस मंच से बच्चों को आगे बढ़ने का, अपने आप को दिखाने का, लोगों को बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो ये आगे आगे आने वाले टाइम में काफ़ी इसका क्रेज़ बढ़ रहा है लोगों में, तो इससे क्या है, लोगों में क्या बहुत सारे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है, जैसे एंकरिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, ये चीज़ें बच्चे इसमें भी आगे जा रहे हैं।
2: जी, क्या समस्या आप निधि जी कि पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या इसमें संभावनाएं हैं?
1: दोनों में ही संभावनाएं हैं। जैसे हमने कहा कि पहले ये सिर्फ फीमेल डोमिनेटेड ऐसे लग रहा था, तो ऐसे अब हमारे पास मिस्टर इंडिया है ना, तो मिसेज मिस्टर यूनिवर्स ऐसे कॉन्टेस्ट
2: ऐसे
1: भी हैं।
2: कॉन्टेस्ट भी
1: तो
2: हैं
1: बहुत
2: जी।
1: सारे डीएम्स मुझे बहुत हैरानी हुई, उन्होंने बोला कि अच्छा आप मिसेज इंडिया बनी हैं, तो क्या आप हमें मिस्टर इंडिया के लिए बता सकती हैं? तो मैंने उनको बोला कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप गूगल पे जाके, इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, थोड़ा सा मैंने सर्च करके उनको बताया। पर मुझे लगता है कि जैसे सुमन जी ने कहा, बिल्कुल बहुत सारी संभावनाएं हैं। अब जैसे लोगों को लगता है कि जैसे कि मैं शायद अपना टीचिंग प्रोफेशन छोड़ दूंगी, मुझे कुछ फिल्में ऑफर हो रही हैं या एड्स ऑफर, ये मेरी चॉइस है कि मुझे उसमें जाना है या
2: या
1: नहीं
2: नहीं
1: जाना है।
2: जाना।
1: तो अगर मैं अपने उसके साथ साथ, आपको अपनी जिंदगी का एक पैशन जरूर होना चाहिए। मैंने बहुत थिएटर किया है, मैंने बहुत कविताएं बोली हैं, मुझे इसमें सब में रुझान था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। तो आप उन सब चीज़ों को निखारिए हर एक की लाइफ में, चाहे वो एक बेटा है चाहे वो एक बेटी है, हमें बचपन से ही उनको ऐसे स्किल्स देने चाहिए कि एक पैशन जरूर डेवलप करो। स्पेशली मैं अपने हर लेक्चर में वुमेन को यही कहती हूँ कि आप एक हाउसवाइफ हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आप एक अपना पैशन जरूर रखिए, चाहे वो सिंपल गार्डनिंग का है, चाहे वो तैयार होने का है, चाहे वो इस मिस इंडिया में कॉन्टेस्ट या मिसेज इंडिया में जाने का है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप एंकरिंग कर सकते हैं, आप जैसे अब मैं कर रही हूँ, मैं उनको मैंने मिसेज इंडिया के भी को जो कोलैबोरेटर्स हैं उनको मैंने कहा है कि महिलाओं के लिए, मंच के लिए मैं कुछ भी करना चाहूँगी, आप अवेयर हैं, तो मुझे वो वर्कशॉप्स भेजते हैं अपने एम्बेसडर की तरह। तो यहाँ पे इस संदर्भ में उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं करियर बनाने के लिए।
2: बिल्कुल।
1: जी

0: और आप क्या समझती हैं सुमन जी के पुरुषों और महिलाओं के लिए जो ये सौंदर्य प्रसाधन है किस तरह उनको इस्तेमाल करने चाहिए? अगर उन्होंने घर में इस्तेमाल करने हैं माहिर का इसमें कितना रोल है?
1: मार्केट में तो देखो आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, किसी को कोई नॉलेज नहीं होती कि हम के कौन सी फेस पे कौन सी स्किन पे कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया जाए। तो इससे अच्छा है कि आप सलून में आएं या अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलें, तो किसी की सलाह के अनुसार ही अपने प्रोडक्ट यूज़ किए जाएं।
0: क्योंकि बहुत
1: तो आज
0: आते हैं
1: उनका
0: आजकल जो है वो इंजेक्शंस भी लगते हैं।
1: नहीं, ये चीज़ें तो
0: हाँ
1: आजकल बच्चों में बहुत बढ़ चुकी हैं, पर ये चीज़ें बहुत ही गलत है। इन चीज़ों का सहारा ना लेके अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी डाइट, ये चीज़ें मैं तो यही मानती हूँ कि इन
0: जी,
1: चीज़ों का सहारा ज़्यादा बढ़िया रहता है।
0: तो आप क्या समझते हैं राजीव जी, युवा वर्ग के लिए क्या संभावनाएं हैं, कैसे उन्हें आगे आना चाहिए फील्ड में, कैसे उनको क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उनके मन में क्या सोच होनी चाहिए उनकी?
2: मैम, युवा वर्ग के लिए इसमें बहुत मौके हैं। अगर वो किसी ऐसे प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, मान लीजिए वो विजेता बने या नहीं बने, वो एक अलग मैटर है। उसके बाद उन्हें फिल्मों में, मॉडलिंग में, टीवी में या मीडिया में उनको एंकरिंग करने का मौका मिलता है, उनको अभिनय करने का मौका मिलता है, उनके लिए और कई फील्ड्स खुल जाती हैं। तो उनके लिए इस चीज़ का फ़ायदा तो है। कुछ इसमें एक बुरी चीज़ ये हुई कि कुछ बाज़ार के साथ जुड़ गए हैं। वो बाज़ार का जो प्रभाव है वो यूथ पर भी हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यूथ बाज़ार के प्रभाव से बचे, कि ये फलां ब्यूटी प्रोडक्ट अच्छा है, मुझे यही यूज़ करना है, और उसमें कोई बार्गेनिंग भी नहीं है, इस बाज़ार में कोई बार्गेनिंग नहीं है। तो यूथ को ये सब चीज़ें समझनी चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है कि यूथ के लिए मौके तो बहुत हैं, लेकिन सोच समझ कर, देखभाल कर, सब कुछ विचार करने के बाद।
0: आपको लगता है कि युवा जो वर्ग है उसमें एग्रेशन ज्यादा है, ये भी एक वजह हो जाती है आगे बढ़ने की? एग्रेशन कई बार ज्यादा है कि नहीं ये चीज़ चाहिए तो चाहिए,
1: चाहिए
0: उसके
1: या
0: लिए कुछ
1: हाँ
0: भी वो करते
2: बिल्कुल
0: हैं।
2: बिल्कुल, इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। मैंने आगे बढ़ना ही बढ़ना है, तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए।
0: नहीं ये तो एक सोच हो गई ना,
2: हाँ
0: पर
2: जी,
0: एक होते हैं रिबेलियस है ना,
2: हाँ, एक होता है कि
0: जो
2: बिना तैयारी के कि मैंने ये
0: जी
2: करना
0: जी
2: ही है, आपके पास तैयारी है नहीं, तो फिर आप सही और गलत सब रास्ता अख्तियार करोगे, उसका आपको नुकसान हो सकता है।
3: एक्चुअली
2: तो
3: इस युवा पीढ़ी में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं,
1: हाँ,
3: जी जैसे कि सोशल मीडिया पे या डिस्ट्रैक्शन बहुत है, और आपने कहा बिल्कुल
1: एडवर्टाइजमेंट जो भी
3: एडवर्टाइजमेंट
1: देखते
3: देख
1: हैं
3: के
1: वही कहते हैं कि
3: बिल्कुल,
1: हमें वही
3: और
1: प्रोडक्ट
3: आपने
1: यूज़
3: बहुत अच्छा
2: करने
3: वर्ड यूज़ किया कि वो
1: हैं।
3: बहुत रिबेलियस है,
1: हाँ
3: जैसे कि हमारे और उनके टाइम में बहुत फर्क है,
1: जी,
3: जो हमारी हमारे लिए लग्जरीज थी आज उनके लिए नेसेसिटीज हैं, तो
1: नेसेसिटी,
3: शायद उनको सब कुछ प्लेट में मिल रहा है, इस करके उनको इतनी वैल्यू भी नहीं है, तो उनको है कि हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि हम मुझे चाहिए ही चाहिए, अगर
2: भार
3: नहीं
2: बहुत कम हो
3: चाहिए
2: रहा है।
3: तो
2: हाँ
3: उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बहुत सारे हैं।
0: और आपको क्या लगता है आजकल माँ बाप सर्विस करते हैं बाहर जाते हैं और बच्चों की तरफ कम ध्यान दे पाते हैं, ये भी एक वजह है कि वो टीवी देखते हैं मोबाइल देखते हैं, इससे ग्लैमर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनका खिंचाव बढ़ जाता है, उसके बाद वो कुछ नकारात्मक पहलू भी
3: जी
0: उसके
3: जी
0: साथ जुड़ जाते
1: बिल्कुल,
0: हैं,
1: ये है,
0: सकारात्मक तो जुड़ते ही जुड़ते हैं पर नकारात्मक भी जुड़ जाते हैं, ऐसा है बाबा जी?
2: माँ बाप अपने बच्चों पे आजकल चाहे सर्विस करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि आजकल बहुत ध्यान देते हैं। वो कुछ जगह ऐसे केसेस होते हैं कि माँ बाप ध्यान नहीं दे पाते। आजकल माँ बाप दोनों काम ही इसलिए करते हैं कि बच्चों को हर चीज़ मुहैया करवा सकें। तो जैसे मैं, हमने पहले कहा, इस चीज़ का नुकसान भी हो जाता है कि भाई बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते। जैसे वो टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया देखते हैं, तो उनका ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है, वो उस चीज़ को पाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते।
0: उनको लगता है कि रातों रात हम स्टार बन
2: मान
0: जाए।
2: लीजिए वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, पतला होना
0: जी
2: चाहते हैं, सुंदर
0: बिल्कुल,
2: दिखना चाहते हैं, तो वो उसके लिए कसरत नहीं करेंगे, प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेंगे खाने
0: जी
2: में या लगाने में। तो बच्चों में एक तरह से मेहनत कम हो रही है,
0: जी जी
2: तो
0: बिल्कुल
2: ये
0: सही
2: नहीं
0: कहा,
2: होना चाहिए।
0: क्योंकि ये
2: बिल्कुल,
0: संघर्ष का दौर है,
2: हाँ
0: हम किसी
2: जी,
0: भी शख्सियत को पढ़ते हैं जो फिल्मी हो या नॉन फिल्मी हो, को जो भी शख्सियत आगे जा रही है उसके पीछे की कहानी अगर हम
2: जी
0: देखें तो एक
2: बिल्कुल
0: दर्द भरी दास्तान है,
2: जी,
0: तो ये
2: हर काम में संघर्ष है,
0: हर
2: ये तो
0: काम में
2: है ये।
0: संघर्ष है, और ये दर्द की दास्तान अगर सुनो तो बहुत चीजें हैं जो उनके मन में जो है दास्तान अगर सुनेंगे तो शायद हमें भी रोना आ जाएगा,
2: बिल्कुल
0: तो
2: बिल्कुल,
0: जो पूरी तरह से ग्लैमर लाइफ है उसके पीछे बहुत कुछ है,
1: पर
0: बहुत कुछ
1: युवा
0: है।
1: पीढ़ी को लगता है कि ये बहुत आसान चीज़ है।
0: तो आप भी
2: बिल्कुल
0: डाइटिंग करते हैं, आप ये बताइए मुझे।
3: मैं आपके उसी बात पे आ रही थी कि
1: जी
3: इस माध्यम से मैं अपने अनुभव से ये कि मैंने जिंदगी में कभी डाइटिंग नहीं की है, मैं रेगुलर योगा करती हूँ, जैसे सुमन जी ने भी कहा था कि आप अच्छा खाइए अपनी डाइट पे, आप डाइटिंग मत करिए, आप अच्छी डाइट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो आपके अंदर जाएगा वही बाहर दिखता है, तो मैंने कभी डाइटिंग नहीं की है। आप एक्सरसाइज शेड्यूल, आपको कुछ भी अच्छा लगता है, आपको 1 घंटा जिम जाना है, आपको सैर करनी है, आपको योगा करनी है, एरोबिक्स करना है, डांस, दैट इज योर चॉइस, आप कुछ करिए और उसके साथ अच्छी डाइट रखिए, तो नेचुरली वो आपके स्किन पे दिखता है।
1: दिखता
3: मैंने
1: है, और
3: वहां
1: टाइम
3: पे
1: पर सोना।

0: ना
1: टाइम पे
0: जागना,
1: सोना,
0: ये
1: बिल्कुल
0: चीजों में बच्चों में
1: स्ट्रेस
0: आजकल ये
1: मैनेजमेंट
0: चीज
1: करना। मुझे
0: कम हो
1: मेकअप की
0: गई।
1: बहुत कम नॉलेज थी, मेरी नेचुरली स्किन अच्छी थी, बट मैंने कभी भी मेकअप नहीं किया था। तो बल्कि मिसेज इंडिया के जाने से पहले मुझे मेकअप टिप्स लेने पड़े, बट वहां पे जाके मैंने देखा कि ये सब चीजें अगर वही आपकी, हमें वहां पे बहुत सारी वर्कशॉप दी गई, हमें सब कुछ सिखाया गया, रैंप वॉक कैसे करते हैं, अच्छा खाना कैसे खाते हैं, आप किसी बाहर टेबल पे गए हैं डिनर करने के लिए तो टेबल एटिक्वेट्स क्या है, तो सब कुछ आपको सिखाया जाता है। तो आप अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा सोचिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए, टाइम पे सोइए, तो आपकी स्किन, आपकी बॉडी
0: बॉडी सब
1: जरूर
0: कुछ।
1: आपकी रिफ्लेक्ट करेगी वो।
0: हाँ।
2: तो सुमन जी, वास्तविक सौंदर्य आपकी से समझती हैं बच्चों को, युवा वर्ग को, कैसे आप प्रेरित करती हैं कि वास्तविक सौंदर्य क्या है प्रसाधनों के साथ?
0: आपकी सोच, आपका व्यवहार कैसा है, ये चीजें साथ में मायने रखती हैं। अकेली सुंदरता आपकी बॉडी फिगर नहीं, बल्कि आपका जो व्यवहार है, आप दूसरों के सामने खुद को क्या प्रेजेंट करती हैं, ये चीजें जरूरी होती
2: आपके
0: हैं।
2: अंदर कितनी मिठास है ये है,
0: हाँ
2: आपका
0: जी
2: चरित्र
0: बिल्कुल।
2: निर्माण में किस तरह की सांस्कृतिक चीजें हैं
0: हाँ
2: वो मैटर करती हैं। तो बाबा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में?
3: मेरा भी यही मानना है कि हर चीज़ मैटर करती है। जैसे मैम ने पहले भी बताया कि पढ़ाई भी ज़रूरी है, अपना करियर भी ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं है कि मतलब मैं सुंदर बन जाऊं या मैं किसी चीज़ में ये कॉन्टेस्ट जीत लूं, उसके पीछे आपने भी बताया कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम देखते हैं कि फलां फिल्म स्टार है वो बहुत कामयाब है, फलां फिल्म अभिनेत्री बहुत कामयाब है, उसने कैसे
2: बिल्कुल
3: संघर्ष किया है,
2: बिल्कुल
3: कैसे उसने कई दिन थोड़ा खा के या कैसे उसने काटे हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने डायरेक्टर्स के पास जा जा के काम मांगा है, कितनी मेहनत करी है, तो वो सब चीज़ें वो किसी को नहीं दिखती। हम मेन मेन चीज़ जैसे कहते हैं मोटा मोटी देख लिया कि हमने हमने ये काम करना है, तो उसके पीछे जो हर चीज़ है उस वो भी देखनी ज़रूरी है। मेहनत ज़रूरी है, परिश्रम ज़रूरी है, हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता।
1: बिल्कुल, मैं इस संदर्भ में ये बात ज़रूर जोड़ना चाहूँगी कि हम एक बच्चों के लिए कह देते हैं कि डिस्ट्रैक्शन है, बट बच्चों के लिए भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। हमारे अगर हम 20 साल पहले बात करें, 30 साल और आज की दुनिया में बहुत फ़र्क है। उसमें कॉम्पिटिशन मॉडलिंग के लिए, एक्टिंग के लिए बहुत कम थे, बट आज उनका कॉम्पिटिशन भी बहुत है। उनको भी उसमें सर्वाइव करना पड़ रहा है,
2: अपॉर्चुनिटीज बहुत है
1: अपॉर्चुनिटीज बहुत है। आप
2: जी।
1: सिंगर की बात कर लें तो आपको इतने सारे सिंगर्स मिलेंगे, आप मॉडलिंग की बात कर लें तो आपको इतनी सारी मॉडलिंग, तो उनके ऊपर भी एक अलग सा प्रेशर है। उनको भी इतने, अब जैसे कि अब 90 से अबव % कॉमन है, पहले हमारे टाइम पे फर्स्ट डिवीजन या 70%, मैंने डिस्टिंक्शन में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो तब वही बहुत मानी जाती थी,
2: जी
1: तो उनके लिए भी मुश्किल है। बट मुझे लगता है कि अपनी फैमिली के सपोर्ट, आप अपने बच्चों के साथ कितने जुड़े हुए हैं, अगर मुझे लगता है, मैं अपने बच्चों से भी यही कहती हूँ कि आज के टाइम पे 90% से भी ज़्यादा अपने कॉलेज में बच्चों को ये सिखाती हूँ कि अगर मैं एक अच्छी टीचर हूँ, मुझे अगर ज्ञान है, नॉलेज है, बट मैं अगर अपने बच्चों को कम्युनिकेट ना कर पा पाई, पढ़ा नहीं पाई, तो मैं एक अच्छी टीचर नहीं हूँ। तो सिमिलरली आपके पास सब कुछ है, बट अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, ऐसे सौंदर्य प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा आई थिंक जो मुझे भी किसी चीज ने फायदा किया वो ये किया कि आपकी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं,
2: जी
1: आप कैसे अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं। हमारे साथ कंटेस्टेंट्स थी, कोई डॉक्टर्स थी, कोई साइंटिस्ट थी, अलग अलग क्षेत्रों से थी, बट वहां पे वही आगे गया जो अपने विचार अच्छी तरह से इतने लोगों के सामने प्रेजेंट कर पा रहा
2: प्रेजेंट कर
1: है।
2: पाए, रख सके
1: बिल्कुल, तो आज एक 65% वाला बच्चा भी एवरेज एक अच्छी जॉब एक मल्टीनेशनल कंपनी में ले सकता है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है, तो आप एक 80% और 90% जो है व्यक्ति उसको भी पिछाड़ सकते हैं।
2: बिल्कुल ही पिछाड़ सकते हैं, और एक ही आपका संघर्ष ही आपको आगे लेके
1: बिल्कुल
2: आता है।
1: बिल्कुल
2: जी, तो वैसे तो बहुत सारी बातें हम और भी कर सकते हैं, पर समय हमें कह रहा है कि हमें चलना पड़ेगा, और हम जानना चाहते हैं कुछ खास संदेश कहना चाहेंगे। बाबा जी, आप क्या देना चाहेंगे युवा वर्ग को, क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: मेरे साथ दो अनुभवी इस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, वो मेरे से ज़्यादा संदेश अच्छा दे सकते हैं। मेरा संदेश जो मेरे तजुर्बे के मुताबिक तो यही है कि अच्छा देखिए, वो भी ज़रूरी है, उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके लिए कई क्षेत्र खुल जाते हैं, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है उस पर भी ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई, अपना करियर, अपना परिवार, सब कुछ साथ लेकर चलिए।
2: बिल्कुल,
3: तो मेरा तो यही कहना है
2: परिवार का सहयोग जरूरी है
3: जी, युवा
2: जी।
3: पीढ़ी
2: क्या
3: इन
2: कहना
3: सब पर
2: चाहेंगे
3: ध्यान
2: सुमन
3: दे।
2: जी आप?
0: मैं कहना चाहूंगी खुद को पहचानिए, खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही सबसे खास हैं।
2: सबसे खास हैं, बिल्कुल। जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अपने आप में एक महान बात मानी जाती है। तो निधि जी आप क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि

0: बिग सपनों की कोई उम्र नहीं होती है।
1: बिल्कुल
0: अगर मैं कर पाई हूं तो हर एक व्यक्ति कर पाएगा। तो अपने पे आत्मविश्वास रखिए और ड्रीम करना कभी मत भूलिए। आप सपने लीजिए और उन सपनों को साकार करने की हिम्मत भी रखिए।
1: बिल्कुल हिम्मत रखिए और आगे पढ़ने की कोशिश भी करिए और
0: बिल्कुल
1: हार नहीं मानिए। ये नहीं कि कई बार बच्चे जो हैं पीछे रह जाते हैं हार की वजह से, हार नहीं माननी, आगे ही आगे बढ़ना है।
0: बिल्कुल
1: तो निधि शर्मा जी, सुमन वर्मा जी, राजीव कुमार बाबा जी, सुंदर प्रतियोगिता एक अवलोकन, इस विषय पर हमने एक परिचर्चा की। आप आए और इतनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी हमारे युवा वर्ग को एक संदेश देगी, साथ में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगी और संघर्ष करने के लिए भी कहेगी। तो आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रश्न चिन्ह सौंदर्य प्रयोगिताओं एक अवलोकन परिचर्चा पर कर रहे थे सुमन वर्मा, निधि शर्मा और राजीव बावा। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पिछे छोटा जहा अंतराल

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 854 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर अति डीटीए दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दाए जलंधर केंद्रे। पेश ने हुण तक दियां मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज होरमुज़ जलमार्ग राही सुरक्षित अते बिना रुकावट आवाजाई लई भारत दे समर्थन नूं दोहराया है। ईरान दे विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने कहा है कि भारत पछमी एशिया विच शांति स्थापित करन विच वड्डी भूमिका निभा सकदा है। BRICS मैंबर देशां दे विदेश मंत्रियां ने आलमी शासन विच सुधार लई अपनी वचनबद्धता दोहराई है। नीट यूजी 2026 दी रद्द हुई परीक्षा हुण 21 जून नूं होवेगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार जिले दे पोशाला कॉम्पलैक्स नूं हिंदू मंदिर ऐलान दिता। हलवारा हवाई अड्डे ते एयर इंडिया दी पहली उड़ान दे आउण नाल पंजाब दा लुधियाणा भारत दे व्यापारक हवाबाजी नेटवर्क नाल जुड़िया। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने ट्रिब्यून चौंक फ्लाईओवर रही दरख्तां दी कटाई ते रोक लगाई। चोन कमिशन वालों केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच विशेष तीबर शोध 15 जून तो करवाउण दा ऐलान है। मौसम विभाग ने अज पंजाब अते हरियाणा विच कुछ थावां ते गरज चमक नाल हल्की तो

चंद्रकांता कपूर दी आवाज सुन रहे सी ये लोकगीत। अगला गीत सुनते हैं सतिंदर सरताज की आवाज़ दे विच चन्न दा घर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के

0: साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटी। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional

0: हेलो, सत श्री अकाल।
1: सत श्री अकाल जी, की हाल चाल संतोष जी? हाँ जी, थोड़ा फ़ोन मिल गया जी, बिल्कुल थोड़ी आवाज़ पहुंच रही है। लगता है जी फ़ोन लाइन उन्होंने मिलाई, पर कोई तकनीकी खराबी करके या किसी कारण उन्होंने आवाज़ हुण नहीं पहुंच रही। पहला उन्हों की हैलो ज़रूर सुन गए जी, बिल्कुल जी। मैं एक बारी फिर तू हैलो कह दिना, की पता जी दूजी बारी तुसी साड़ी हैलो सुन लवो जी। शायद इन्हां दी आवाज़ नहीं पहुंच रही साढ़े तक, ते खैर जी साढ़े अगले फोन कॉलर साढ़े नाल जुड़ जाणगे। तद तक असी अगला एक गीत जिहड़ा है वो सुन लेंदे हाँ, ते व्हाट्सएप दे जरिए सानू एक फरमाइश सांझे तौर ते इस गीत दी आई, ते लो जी इन्हां सब दी फरमाइश कर दिंदे हाँ, ते अगले फोन कॉलर दी उडीक करदे हाँ।
2: सुन।

सुन रहे जी प्रोग्राम स्वागत स्टूडियो के मुताबिक इस वेले समा हो रहा जी 11:45 का रह गए वैसे कुछ कु सकेंट तो इस तरह ही गीत संगीत इस महफिल में रख रहे हाँ सजा के ते धर्म सानू जलंधर तो ही मैसेज कर रहे ने जी फरासी हिसार तो भी मैसेज आया सानू राजकुमार दूधी जी का प्रमोद कुमार दूधी पुष्पेंद्र कुमार दूधी जी का सुनना चाह रहे हैं जी कोई भी गीत पंजाबी गीत विच शामिल करो बिल्कुल जी गीत संगीत इस वेले तो 1 बजे तक पंजाबी ही चलेगा तो करदा तुहाड़ा स्वागत जी बहुत बहुत जलालाबाद पछमी तो सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी ते निमित आहूजा भी जुड़े हुए ने इन्हां दा भी कर रहे हैं स्वागत ते सुनते हैं ए अगला गीत

कृष्ण पार्क दिलितों सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी तो पिंटू दीवाना राजेंद्र सिंह ओबराए जुड़े हुए प्रोग्राम दे विच करदा जी स्वागत इना दा प्रोग्राम दे विच ते गीत सुनना चाह रहे ने इना वालों जी फरमाइश आई वो है गुरचरण बोबली दे प्रोमिला पमी दी आवाज़ दे विच इस गीत नू सुनन दी

बहुत बहुत स्वागत करता हाँ प्रोग्राम सौगात दे विच चांद टिंगरा जी रजना रंजना टिंगरा ईशु एमी पैर परी सत श्री अकाल भेज रहे ने जी प्रोग्राम सौगात दे विच शामिल हो रहे ने। गीत संगीत का सिलसिला इस तरह ही जारी है और दिन शनिवार का चढ़न वाला है और नवें दिन की शुरुआत एक नवी आवाज़ के नाल करांगे और बहुत बहुत स्वागत करते हाँ तुहाडा ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ।

प्रोग्राम स्वागत सारंदा निगा स्वागत पहले गीत की फरमाइश आई है लो सुन दे हाँ जी व्हाट्सएप के जरिए ही जो कि पहला उन्होंने सत श्री अकाल पैरी जी भेजी तो फिर उन्हें एक फरमाइश भी भेज रहे हैं जी लानवा तो ही चांद टिंगरा जी रंजना टिंगरा ईशू एमी गीत भेज रहे हो जी और जो इस वेले मेरे को यही गीत अवेलेबल है जी वो नरेंद्र बीबा की आवाज़ के है तो मैं उही गीत तुहाडे नाल सांझा कर रहा हूँ।

चकला बाजार समाणा शहर तो पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू इस्माइल खुशदिल, हंस मुखलाल जिंदल, संजीव सुनीता बंटी जिंदल, आरजू महक खुशदिल ते पूरा ही खुशदिल परिवार जुड़िया होया जी प्रोग्राम दे विच शामिल हो रहे हैं। तो जी लिखते हैं जी गुलाब के फुलन नाल धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम दे विच शामिल होने के लिए। अबोर तो राम साहेब शास्त्री जी भी जुड़े हुए ने प्रोग्राम दे विच ते सुनना चाह रहे ने कुलदीप माणक की आवाज़ दे विच कोई भी गीत। तो लो जी थोड़ी फरमाइश ते असी सुनते हैं जी कुलदीप माणक की आवाज़ च ए एक सदाबहार नगमा।

पगला पगन जिमें अंगियार तेरी मेरी हम मेरी तेरी हम तेरी मेरी मेरी तेरी मेरी तेरी तेरी मेरी अख लड़ जाए अख लड़ जाए।

तप तप लुह लुह हाथ मरोरौ, बावल हुई सो सौ लोरौ। तै सह मन में है किया रोस, मुझ अवगन सह नाही दोस। बिरहों कुठे हृदय विचो निकले ए बोल, बाबा फरीद जी द्वारा उचारित ने। प्रभु नू मिलन दी सिख रखन वालियां जीव रूपी स्त्रियां दे बोलां विचों मन दी अवस्था दा चित्रण हुंदा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी राग बिलावल विच उचारित शब्द विच फरमाउंदे ने कि मेरा मन उस दयाल प्रभु नाल विद्या गया है, उस तो इलावा मेरे हिरदे दी वेदना नू कौन जान सकता है। मैनू उस उपर आस ते भरोसा है, इसे करके मैनू किसे होर दूजे दी कोई चिंता नहीं है। मन बेधिया दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। सरवण करदे हां भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: बेध्या दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उना दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी गुरमीत सिंह।
1: बिलावल महला पहला, मन मंदर तन वेस कलंदर, घट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरा प्राण बस्त है, बाहड़ जन्म ना आवा। मन बिद्या दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। रहाओ अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी, जलथल महियल भरपुर लीना, घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदिर छावा तेरे, तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। जी जंत सब सरण तुम्हारी, सर्ब चिंत तुद पासे, जो तुद भावै सोई चंगा, एक नानक की अरदासे। यह पावन बचन सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी दे राग बिलावल विच उचारण कीते होए, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 795 उपर सुभाए मान हन। इस शब्द दा केंद्री भाव जो शब्द दियां रहाओ वालियां पंक्तियां विच मौजूद है, साहिब फुरमान करदे हन, मन बिद्या दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। रहाओ मनुखी मन दा सुभाओ है कि इह किसे खास वस्तु थां जां व्यक्ति नाल जुड़न दी कोशिश विच लगा रहिंदा है, जिस तों मन दी तृप्ति नहीं हुंदी अते भटकना बनी रहिंदी है। पर गुरु बचना मुताबक जे इह मन अपने असले नूं समझ लवे कि मैं उस प्रभु दी अंश हाँ, तां इह मन गुरु किरपा नाल उस प्रभु दे चरणा नाल जुड़ आत्मक आनंद दी प्राप्ति कर लैंदा है। राग आसा विच गुरु अमरदास जी दे बचन हन, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, हे मेरे मन तू उस परमात्मा दी अंश है जो प्रकाश स्वरूप है, हे मन तू उस अपने असले नाल सांझ बना लै, मूल पछाण है तां सहो जाणै मरण जीवन की सोझी होई। विचार अधीन पंक्तियां विच साहिब बख्शिश करदे हन, मन बिद्या दयाल सेती मेरी माई, कौन जाणै पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। रहाओ हे मेरी माँ भाव, मैनू प्रभु चरणा नाल जोड़न वाले सतगुरु जी, आप जी दे उपदेश सदका मेरा मन दया दे घर प्रभु चरणा दे विच विज गया है, भाव लीन हो गया है, जुड़ गया है, अते मैनू यह यकीन हो गया है कि परमात्मा तो बिना कोई होर मेरी वेदना भाव दिल दी पीड़ नूं नहीं समझ सकदा। इस करके हुण मैं प्रभु तो बिना किसी होर दी आस नहीं रखदा। गुरु रामदास जी गोंड राग विच वचन करदे हन, हर दर्शन कौ मेरा मन बहु तपतै, ज्यों त्रिखावंत बिन नीर, मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रभ जाने, मेरे मन अंतर की पीर। रहाओ हे सतसंगी जनो, उस प्रेम दे तीर दे कारण हुण मेरा मन प्रभु दे दर्शना वास्तियों विलकदा है, जिवें कोई प्यासा मनुख पानी नूं तरसदा है। परमात्मा दा प्यार मेरे मन विच तीर वांग लगा है, उस प्रेम तीर दे कारण पैदा हुई पीड़ा नूं मेरा हरी प्रभु ही जानदा है, होर कोई दूजा नहीं। शब्द दे आरंभ विच फरमाउंदे हन बिलावल महला पहला, मन मंदर तन वेस कलंदर, घट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरा प्राण बस्त है, बाहड़ जन्म ना आवा। भाव मेरा मन प्रभु देव दे रहण लई मंदर बन गया है, मेरा शरीर भाव हरेक ज्ञान इंद्रा मंदर दी यात्रा करन वाला रमता साधु बन गया है।

दरअसल हर मंदिर उस प्रभु दा निवास स्थान है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने इस धरती दे उत्ते सचखंड श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर की स्थापना करवाई। मानो इस धरती दे उत्ते ओ हरिमंदर है। आप जी इस हरिमंदर की उपमा करते ने, डिठे सभे थाव नहीं तुद जेहया, बधो पुरख बिधातै तां तू सोहया, वसदी सघन अपार अनूप रामदासपुर, हरिहां नानक कसमल जाहे नाइये रामदास सर। सरवण करदे हां भाई अनूप सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

ज्ञान कराज बरताया सतयुग आलिया गुर शब्द मन मानिया अपतीज पतिया गुर नानक सच्ची मठा।

खेल कूड़ो पियो हर राय संतोख समाचरयो बिमल बुद्ध सतगुर सामानो आजू नहीं संभव्यो सो जस कल कर।